दोस्तों, भक्ति के सुर, आराधना की धुन, जुड़िए हमारे साथ हर दिन आराधना के संग। जिस तरह आप सभी जुड़े हुए हैं इस समय इस प्यारे से कार्यक्रम में आराधना, बिल्कुल दोस्तों ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए आप सभी को लेकर चलते हैं एक और भजन की ओर।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना कार्यक्रम अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सुबह की शुरुआत हो आराधना के साथ दिव्यता से भरा एक खास अनुभव। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आराधना अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों भक्ति संगीत आराधना का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो रोज रुचिका के साथ। भजन और मंत्रों की गूंज आराधना लेकर आता है हर दिन दोस्तों आपके दिल को सुकून देने वाले ये प्यारे प्यारे से भजन। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं आराधना। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

दोस्तों भक्ति संगीत आराधना का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला भजन।

दोस्तों, भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आराधना आप सभी सुन रहे थे अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

बाद ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तने मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकर माती दी महक तशुतों कर दिन अपने कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते करने तो हाँ सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दर्शकों तो हाँ सारे ही सुने प्यारा दिया गीत तो फिर ते आपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते आहां अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो तुहां सारे भी सुना कने इन्ने सुनदे रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं तुम्हारा सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत। श्रोताओं फिर ते अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत। तो तुम सारे भी सुना कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्स पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला श्रोताओं तुहां सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुना देने से सुना देने माश्टी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने ता कार्यक्रम च फिर अगे बढ़ने जिहड़ा कि तुहां दा ध्यान है से फिर एक गीत संगीत दी तरफ ले चलदे ने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारेयां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला ताशो तों तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है सैथी संपन्न होंदा है तो तोहां सारे अपने रेडियो दोस्त शशि जी दी अनुमति कन्ने सुनदे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्म

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया।
1: यार अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल?
4: बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
5: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आ रहे हैं हमारे दुखों को हरने वाले, सुख समृद्धि देने वाले विघ्नहर्ता गणेश। जी हाँ, श्रद्धा और आस्था का पावन पर्व गणेश चतुर्थी आ रही है, खुशियों का मौसम आ रहा है और हमारे लाडले बप्पा हमारे घरों को महकाने आ रहे हैं। बुद्धि के दाता मंगल मूर्ति के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। आइए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मिलकर भक्ति के इस पावन उत्सव को मनाएं, अपने घरों को सजाएं, मोदक बनाएं और पूरे दिल से कहिए गणपति बप्पा मोरिया।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज
1: दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरप्राइज समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं घर जा रही हूँ।
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला,
7: और डॉक्टर को भी।
6: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी,
5: और ब्लड डोनर को।
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: वैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
10: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
9: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
10: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
9: हाँ देखो क्या हो गया।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM। प्रस्तुत है आज का समाचार बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे।

सीबीएसई स्कूलों में बंद नहीं होंगे स्कूल कोर्स। 22 नवंबर से होगी हिमाचल टीईटी। 5,659 बिजली बोर्ड पेंशनरों को मिलेगा पूरा एरियर। जलवायु परिवर्तन से बदल रहा नदियों का मिजाज। पुलिस अधिकारियों की मोबाइल से लगेगी हाजिरी। बीपीएल सूची से अलग होगी परिवार पहचान प्रक्रिया। इको टूरिज्म में बेहतर

अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में स्कूल कोर्स बंद करने की योजना नहीं है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि विद्यार्थियों को आधुनिक और रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए नए विषयों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। प्लम्बिंग और सिक्योरिटी जैसे विषयों को शुरू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई है। विभाग का मानना है कि स्कूली शिक्षा में व्यावहारिक कौशल को शामिल करने से विद्यार्थियों को आगे रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल उपलब्ध करवाने की दिशा में काम करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड नवंबर और दिसंबर में अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक टीईटी परीक्षा आयोजित होगी। अभ्यर्थी 11 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के अनुसार टीईटी में विभिन्न विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी बोर्ड की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के हजारों पेंशनरों के लिए राहत की खबर है। वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए 5,659 पेंशनरों को संशोधित पेंशन का पूरा एरियर देने का निर्णय लिया गया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने संशोधित पेंशन का बचा हुआ 100% एरियर जारी करने की अधिसूचना जारी की है। इससे उन पेंशनरों को राहत मिलेगी जिन्हें संशोधित पेंशन का पूरा बकाया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। बोर्ड की ओर से संबंधित प्रक्रिया के तहत पेंशनरों को भुगतान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों की नदियों पर जलवायु परिवर्तन का असर सामने आ रहा है। अध्ययनों में ग्लेशियरों के पिघलने, तापमान में बढ़ोतरी और नदियों के जल प्रवाह में बदलाव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ग्लेशियरों में लगातार बदलाव का असर भविष्य में पानी की उपलब्धता, कृषि और पर्यावरण पर पड़ सकता है। हिमालयी क्षेत्र में जल संसाधनों को सुरक्षित रखने और बदलते पर्यावरण की निगरानी को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में डिजिटल व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। अब अधिकारियों की हाजिरी मोबाइल के माध्यम से दर्ज होगी। हिम उपस्थिति ऐप में इन आउट पंच अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करें। साथ ही डेस्कटॉप पोर्टल के माध्यम से अटेंडेंस दर्ज करने की व्यवस्था पर रोक लगाई गई है। विभाग का उद्देश्य उपस्थिति व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की पहचान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सरकार के अनुसार परिवार पहचान की प्रक्रिया में अब बीपीएल सूची को आधार नहीं बनाया जाएगा। पात्र परिवारों की पहचान निर्धारित प्रक्रिया के सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल किसी परिवार के बीपीएल सूची में शामिल होने या न होने से उसे योजना का लाभ स्वतः नहीं मिलेगा। पात्रता का निर्धारण संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य परिवार पहचान प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और अलग व्यवस्था के रूप में लागू करना है। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने नई पहल की है। इको टूरिज्म में बेहतर कार्य करने वाले वन मंडलों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही रेस्ट हाउस, इको टूरिज्म साइट्स और पार्कों के बेहतर रखरखाव पर भी जोर दिया जा रहा है। विभाग स्थानीय लोगों और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में भी काम कर रहा है। सरकार का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इसका लाभ मिल सके। शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुर्गेला में शाहपुर जोन की 3 दिवसीय अंडर-19 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में शाहपुर जोन के 22 स्कूलों के 357 छात्र भाग ले रहे हैं। इस दौरान खिलाड़ी वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी और शतरंज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अपने संबोधन में केवल सिंह पठानिया ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। खेल बच्चों में अनुशासन, टीम भावना और आपसी भाईचारे की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि कर खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए चंबी खेल मैदान को विकसित किया जा रहा है, जिस पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशे के कारोबार से करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को अब अपनी आय का हिसाब देना होगा।
उन्होंने कहा कि नशा बेचकर आलीशान कोठियां, होटल और दुकानें बनाई गई हैं, जमीन और महंगी गाड़ियां खरीदी गई। उन्होंने कहा कि यह पैसा और संपत्ति गरीबों और उन परिवारों की है जिनके बच्चे नशे के जाल में फंसाए गए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और लगभग 3.27 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के लिए नूरपुर पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ निर्णायक जंग जारी है और नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों की कमाई का हर रुपया अब जनता का होगा। उन्होंने कहा कि नशे की कमाई से बनाई गई संपत्ति वास्तव में उन परिवारों की कीमत पर अर्जित होती है जिनके बच्चे इस गंभीर सामाजिक बुराई का शिकार हो जाते हैं। नूरपुर में जब्त की गई संपत्तियों में आलीशान कोठी, भूमि, होटल, दुकानें, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य नशे के पूरे नेटवर्क, उसकी आर्थिक व्यवस्था और उससे अर्जित अवैध संपत्ति को पूरी तरह ध्वस्त करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस दिशा में पूरी स्वतंत्रता दी गई है तथा उन्हें राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आप सुन रहे थे रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM का समाचार बुलेटिन। धन्यवाद।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आ रहे हैं हमारे दुखों को हरने वाले, सुख समृद्धि देने वाले विघ्नहर्ता गणेश। जी हाँ, श्रद्धा और आस्था का पावन पर्व गणेश चतुर्थी आ रही है, खुशियों का मौसम आ रहा है और हमारे लाडले बप्पा हमारे घरों को महकाने आ रहे हैं। बुद्धि के दाता मंगल मूर्ति के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। आइए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मिलकर भक्ति के इस पावन उत्सव को मनाएं, अपने घरों को सजाएं, मोदक बनाएं और पूरे दिल से कहिए गणपति बप्पा मोरिया।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीबी है उसको।
0: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन।

0: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरपैर समझ नहीं पा रहा था।
1: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
2: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
3: जा रही हो बेटा?
4: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
3: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
4: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
5: और डॉक्टर को भी?
4: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
3: और ब्लड डोनर को?
4: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
5: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
4: वो कैसे?
6: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
5: बस हो गया।
6: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
7: वैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
8: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
7: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की दिखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
8: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
7: हाँ देखो क्या हो गया।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 ओमेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो इंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, और बहुत ही प्यारे से आज की यानी कि 13 सितंबर 2026 के सुबह आप सभी की रही है, ये उम्मीद करते हो। हाजिर हो गई हूँ दोस्तों आप सभी के लिए, आप सभी का बेहद खास और बेहद प्यारा सा ये कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। जी दोस्तों, आज रविवार का दिन, संडे का दिन, छुट्टी का दिन है। खैर, पिछले कल भी आप सभी ने छुट्टी मनाई ही है, सेकंड सैटरडे का दिन था। तो ये छुट्टियां बहुत खास होती हैं दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिंदगी का हर एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है। तो इस एक भी पल को ऐसे जाया ना गवाएं और इसकी अहमियत को समझते हुए जिंदगी के हर पल को जरूर अपनों के साथ इंजॉय करें, इंजॉय करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में भी ढेर सारी बातों की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही मनोरंजन भी पीछे नहीं रहता है और जानकारियां भी पीछे नहीं रहती हैं। हर एक चीज का संतुलन जो है, बैलेंस जो है, वो बनाकर हम इस कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे। जी, तो बातचीत के साथ शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देर है तो मनोरंजन की। तो बैलेंस बनाने के लिए लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के खूबसूरत से गीत की और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की इस गीत के साथ।

दोस्तों, इस बहुत ही खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों, कहते हैं दुनिया में सबसे खतरनाक चीज जहर ही नहीं होता, कभी कभी किसी इंसान की जुबान भी जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जहर तो केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन किसी के द्वारा कहे गए कड़वे शब्द इंसान के आत्मविश्वास तक को मार देते हैं। और इंसान की यही जुबान

हारे हुए इंसान को फिर से खड़ा भी कर सकती है, फिर गिरा भी सकती है। तो दोनों पहलू है दोस्तों, इसलिए फैसला आपका होना चाहिए। आपकी आवाज किसी के लिए जहर बनेगी या दवा, क्योंकि किसी को गिराना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी गिरे हुए इंसान को उठाने वाला बनना, यही इंसान होने की असली पहचान है। तो आप कौन सा इंसान बनना चाहते हैं दोस्तों, लोगों को नीचे दबाने वाले, गिराने वाले, या फिर जो लोग हिम्मत हार चुके हैं, गिरा हुआ मतलब कि वो टूट चुके हैं और कहीं ना कहीं जिंदगी से उम्मीदों को हार चुके हैं, तो आप उन्हें उठाने वाले बनना चाहते हैं या उन्हें और ज़्यादा नीचे गिराने वाले बनना चाहते हैं? ये आपका फैसला है, आपकी बातें हैं, आपका नज़रिया है, क्योंकि हर किसी इंसान का सोचने का, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। दुनिया में न जाने कितने लोग हैं, किसी की भी जो है ना सोचने की जो हमारी एक तरह से कह सकते हैं तरीका है वो अलग अलग होगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका थोड़ा सा मैच करेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से आप अपने आप में बहुत खूब हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत समझदार हैं। तो समझदारी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना एक इंसानियत की निशानी है। तो आप इंसान हैं तो इंसानियत की निशानी का क्यों इंतजार, इंसानों की इंसानियत हमेशा उनके साथ रहनी चाहिए। फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और गीत। तो आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: दोस्तों आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये गीत, मेजर साहब मूवी से लिया था और अलका याग्निक आनंद राज आनंद की आवाजों के साथ आप सभी तक पहुंचाया गया। जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और इस समय आप सभी को बता दें दोस्तों, धर्मशाला के तापमान की हम बात करें तो लगभग 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप सभी इस समय का तापमान महसूस कर सकते हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से धीमे पड़े मानसून ने फिर गति जो है वो बढ़ाई है। राज्य के कई हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला में सबसे अधिक बारिश जो है वो दर्ज की गई। जी दोस्तों, तो इस तरह से फिलहाल मौसम का जो आसार है, मौसम विभाग के 7 दिन के पूर्व अनुमान के अनुसार 13 से 17 सितंबर तक मौसम में छिटपुट बारिश की गतिविधि बनी रह सकती है। जी दोस्तों, तो ये है मौसम विभाग के अनुसार मौसम की अपडेट और 9:20 हो चुके हैं कार्यक्रम में, तो समय है कार्यक्रम में कुछ खास जानकारियों का, यानी कि प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को समाचारों की ओर, उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपनी बहुत ही खास बातों के साथ और मनोरंजन के साथ।
1: करते हुए जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। ब्रिक्स सदस्य देशों ने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, टेरर फंडिंग और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंडों को खारिज किया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने का आह्वान किया। नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और सभी संबंधित पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने तथा बातचीत व कूटनीति के माध्यम से विवादों को सुलझाने का आग्रह किया। घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वैश्विक व्यापार आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा नेटवर्क को सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलें।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलें। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज ब्रिक्स के सदस्य और भागीदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता, समावेशी वैश्विक विकास के लिए भविष्य को आकार देने विषय पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले 10 भागीदार देश बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम हैं। इस सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठकें करेंगे। मणिमहेश डल झील में राधाष्टमी पर 19 सितंबर को होने वाले शाही स्नान के लिए चंबा जिला मुख्यालय से पवित्र छड़ी यात्रा धूमधाम के साथ रवाना हुई। इस छड़ी यात्रा में स्थानीय साधु महात्माओं के साथ साथ देश के विभिन्न प्रांतों से आए संतों ने मौजूदगी दर्ज करवाई। ये छड़ी यात्रा लगभग एक सप्ताह का पैदल सफर करके मणिमहेश डल झील पहुंचेगी। दशनाम अखाड़ा चंबा में परंपरा का निर्वहन करते हुए विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात महंत यतेंद्र गिरी की अगुवाई में पवित्र मणिमहेश डल झील के लिए छड़ी रवाना हुई। इस दौरान SDM चंबा चिराग शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने दशनाम अखाड़ा चंबा स्थित भगवान दत्तात्रेय महाराज के मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि परंपरा को निभाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ छड़ी यात्रा मणिमहेश के लिए रवाना हुई।
3: दशनामी अखाड़ा जो हमारा है, उनके द्वारा छड़ी यात्रा की जो आज है शुरुआत की गई है, तो आज साधु संतों की उपस्थिति में और तमाम जो हमारे लोकल लोग हैं उनके साथ मिलकर इसकी पूजा अर्चना के बाद इसकी विधिवत शुरुआत की गई है। तो ये यात्रा जो है 19 तारीख को हमारी भरमौर मणिमहेश पहुँचेगी और इस बीच में बहुत जगह इनके पड़ाव रहेंगे। आज जो पहला पड़ाव है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा के बाद जुलाखड़ी में है।
1: दशनाम अखाड़ा चंबा के महंत यतेंद्र गिरी ने बताया कि राधाष्टमी के दिन सुबह 4 परवी में शामिल होकर डल झील को तोड़ भक्तों के शाही स्नान के द्वार खोलेगी। इसके पश्चात ही श्रद्धालुओं को मणिमहेश तीर्थ पवित्र शाही स्नान का फल प्राप्त होता है।
4: 14 को दुर्गट्टी में पहुंचेगी छड़ी और 15 को भरमौर में और 16 को हरसर में, 17 को धनसौ में, 18 को ऊपर डल जी और 19 को साई स्नान होगा। स्नान करके सभी संतजन साधु संत महात्मा वापिस हो जाएंगे और एक रात भरमौर में और भरमौर के बाद में फिर चंबा आ जाएंगे। 20 तारीख को अखाड़े में कड़ी पकौड़े का भंडारा होगा, मेले का समापन हो जाएगा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
5: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में 2 बार, सुबह और शाम डेली 2 मिनट 2 बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली 2 बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। शीर्ष समाचारों में, पंजाब से बाइक पर मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे 2 श्रद्धालुओं की शनिवार देर रात गेहरा के पास बनोगी में सड़क हादसे में मौत हो गई। हनुमान मंदिर के पास ये बाइक करीब 209 मीटर नीचे जा गिरी। सूचना मिलते ही गेहरा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया। मृतकों की पहचान अनिल कुमार व ज्योति प्रकाश के रूप में हुई है, जो कि दोनों निवासी गांव पंगोली जिला पठानकोट के रहने वाले हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। प्रदेश के सभी न्यायालयों में प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में विभिन्न मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। शिमला के जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि आज 145 बेंचों के समक्ष 146,825 मामले उठाए गए, जिनमें से 111,219 मामलों का निपटारा किया गया है। जनजातीय जिला किन्नौर में सेब सीजन तेजी से आगे बढ़ रहा है। किन्नौर के सेब के लिए इस वर्ष का सीजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किन्नौरी सेब को GI टैग प्राप्त हो चुका है। इससे किन्नौरी सेब की क्षेत्रीय पहचान और ब्रांड वैल्यू को मजबूत करने में मदद मिली है। किन्नौर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैयार होने वाला सेब जिले की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। जिले से कल तक कुल 3.5 लाख से अधिक सेब की पेटियां बाहरी मंडियों के लिए भेजी जा चुकी हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाद।

लाख 26,497, कल्पा से 81,008 और पूर्व से 48,255 सेब की पेटियां बाहर भेजी जा चुकी हैं। किन्नौर के विभिन्न क्षेत्रों से सेब की पेटियां रतनपुर, शिमला, सोलन, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, बिथल, सेंज, मतियाना, परमाणु, नारकंडा और खेक्सू सहित प्रमुख मंडियों के लिए भेजी जा

0: लिए इस वर्ष का सीजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किन्नौरी एप्पल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन पंजीकरण प्राप्त हो चुका है। जीआई टैग से किन्नौरी सेब की क्षेत्रीय पहचान और ब्रांड वैल्यू को मजबूत करने में आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: शिमला में कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने के मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति 15 सितंबर को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। समिति के पदाधिकारियों ने शिमला में कहा कि रोबोटिक सर्जरी की आड़ में सरकार इस ऐतिहासिक अस्पताल को नष्ट करने पर तुली हुई है। समिति की सचिव फालमा चौहान ने बताया कि कमला नेहरू अस्पताल को बचाने के लिए प्रदेश भर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिला है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी लिखता है, अमर उजाला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, नशा तस्करों की आलिशान कोठियां, होटल व जमीन अब कार्रवाई के दायरे में। पंजाब केसरी व दैनिक जागरण के एक जैसे शब्द हैं, अब नशे की कमाई का हर रुपया जनता का होगा। जबकि दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, 180,000 परिवारों को गरीबी से बाहर निकालेगी सुक्खू सरकार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूरी करें। हिमाचल दस्तक का शीर्षक है, चमियाणा अस्पताल में शुरू होंगे किडनी ट्रांसप्लांट। दैनिक भास्कर लिखता है, रामपुर में भूस्खलन, 50 पेड़ गिरे, मानसून से अब तक 1,683 करोड़ रुपए का नुकसान। 102 एम्बुलेंस कर्मियों को बड़ी राहत, कंपनी को 15,000 वेतन देने का आदेश, अमर उजाला की एक अन्य खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार करते हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में की निंदा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज समावेशी विकास के लिए भविष्य को आकार देने विषय पर होगी चर्चा। मणिमहेश डल झील में शाही स्नान के लिए चंबा से पवित्र छड़ी यात्रा धूमधाम से हुई रवाना। और किन्नौरी सेब को जीआई टैग मिलने से ब्रांड वैल्यू को मजबूत करने में मिल रही मदद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे।

दोस्तों, समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला में अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। दोस्तों, कहते हैं समय के साथ जिंदगी का अर्थ भी बदलता जाता है। क्या वाकई में सही बात है ये, या सिर्फ कहने सुनने की बात है? जो कल अधूरा था आज वही मुकम्मल नजर आता है। कभी मंजिलों की चाह थी, कभी रास्तों में सुकून मिला, कभी अपनों की भीड़ में तन्हा हुए, कभी खामोशी में कोई अपना मिला। वक्त ने सिखाया हर खोना अंत नहीं होता, कुछ का बिछड़ना भी जरूरी है, नहीं तो खुद से मिलना मुमकिन नहीं होता। और फिर एक दिन समझ आता है जिंदगी का अर्थ कोई एक नहीं, हर दौर अपना मतलब लिखता है और इंसान हर दौर में थोड़ा नया जन्म लेता है। नए दौर के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। जी दोस्तों, तो इसी नए दौर के साथ अगर हम बात करें आज के समय की, आज के इन पलों की, आज के इस दौर की, तो क्या चल रहा है आप सभी के आसपास? कौन सा ऐसा दौर चल रहा है? क्या फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है या फिर से पीछे की ओर जा रहे हैं? तो इस दौर में दोस्तों बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हम सभी की जिंदगी में एंटर करती हैं, लेकिन उसे कैसे फेस करना है, कैसे उसे टैकल करना है, ये हम सभी पे निर्भर करता है। तो आज की बातचीत बहुत खास रहने वाली है दोस्तों, युवाओं से जुड़ी और हम सभी की जिंदगी से जुड़ी। तो इस खास बातचीत को सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार और आप सभी को करना होगा। फिलहाल लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के एक गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

दोस्तों, धर्म संकट मूवी का ये गीत मनहार उदास साधना सरगम के आवाजों के साथ आप सभी तक पहुंचाया। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों, आज के दिन की हम बात करें तो आज के दिन की तो बहुत खास बात है, क्योंकि रविवार होता ही बहुत प्यारा सा दिन है। रविवार यानी थोड़ा देर से उठना, चाय का कप हाथ में लेकर छत पे बैठना, या फिर थोड़ी सी ये जो धूप खिली हुई है उसका एंजॉय लेना। कहीं घर में आलू के पराठे बन रहे होंगे तो कहीं चाय की खुशबू बहुत ही प्यारी सी मीठी सी आ रही होगी। जी दोस्तों, तो यही होता है सुबह सुबह का प्यारा सा खूबसूरत सा नज़ारा, खास करके छुट्टी वाले दिन का, क्योंकि थोड़ा आराम से उठने का दिन, थोड़ा मतलब कि जो रूटीन है ना, थोड़ी सी मैंने पहले भी कहा है कि गड़बड़ा सी जाती है। खैर, उसे गड़बड़ाना नहीं बोलते, उसे अपनों का प्यार और अपनों के साथ थोड़ा समय बिताना भी हम बोल सकते हैं। लेकिन आज इसी आराम वाले रविवार के दिन हम कुछ खास बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, एक सवाल, हमारे घर का बच्चा, हमारा छोटा भाई, हमारी बेटी, हमारा दोस्त आखिर किस दिशा में जा रहा है? यही दिन है जिस पे कि हम बात कर सकते हैं, माहौल को इस तरह से बना सकते हैं ताकि बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कोई भी हो, खुलकर अपने दिल की बात सभी के साथ या किसी एक के साथ साझा कर सकें। जब उनके मन में उथल पुथल चल रही है, उनके मन में कंफ्यूजन है, उसे किसी के आगे तो रखें ताकि उस पे सोच विचार किया जा सके, और अगर वो कहीं भटक रहे हैं तो उन्हें सही राह दिखाई जाए, क्योंकि परिवार से बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं होता। बाहर लोग बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हर कोई आपको सही दिशा दिखाए, सही राह दिखाए, ये जरूरी नहीं है। बहुत कम लोग हमें करोड़ों में एक कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमें सही राह दिखाएगा। तो शुरुआत में ही हमने बात की थी ना दोस्तों, कि जो इंसान गिरा हुआ है उसे उठाने वाला बनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गिराने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो उठाने वाला बनिए और एक सही दिशा दिखाने वाला बनिए। तो ऐसे लोग होंगे कम, लेकिन जो भी ऐसा निकल कर आएगा वो वाकई में बहुत एक कहते हैं ना कि अच्छी आदतों के साथ आगे जाएगा। और कहते हैं कर्म, हम ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं कोई देखता नहीं है, लेकिन वो समय के हिसाब से हमें उन अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी भी सिचुएशन में किसी भी पल मिल सकता है इस बात के। और कभी भी हम किसी का अच्छा करें तो ये तो बिल्कुल ना सोचे कि हमारा भी अच्छा हो, हम तभी अच्छा करें, तो ये तो स्वार्थपन हो गया ना दोस्तों। तो स्वार्थी कभी मत बनिए, स्वार्थ इसलिए बनिए कि हाँ, अगर किसी को खुशी मिल रही है तो हमारे मन को भी खुशी मिल रही है। ये स्वार्थ सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया। फिलहाल कार्यक्रम में बहुत खास बात होने वाली है, सभी आप सब इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

सभी से होती हैं गलतियाँ, अक्सर जिंदगी का पार्ट होती हैं और हम सभी लोगों ने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। और इस समय की हम बात करें, रिसेंटली हम बात करें, तो एक गलती आप सभी ने की है। वाकई में आप सभी को वो रियलाइज भी हो चुकी है अब तक तो, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हर चीज़ हर किसी तक पहुंच ही जाती है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा था 1980 के दशक में जाने का, तो हर किसी को शौक था। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है, जो भी चीज़ ट्रेंड में आती है ना, तो इसका एक तो होता है अच्छा प्रभाव, लेकिन एक होता है नेगेटिव वाला भी होता है। तो दोनों पहलुओं को हमें नज़र में रखना बेहद ज़रूरी है। खुश होना बुरी बात नहीं है, ट्रेंड के साथ चलना भी बुरी बात नहीं है। शौक होते हैं, हर किसी का होता है। अगर मैंने किया तो मुझे देखकर और लोग भी करेंगे, लेकिन उस देखा देखी के चलते हम अपना नुकसान ना कर बैठें, बस यही गलती है। और ये बहुत बड़ी गलती, और ये किस्सा ऐसे जाने वाला नहीं है दोस्तों। जब भी कोई चीज चलती है तो जो हमारे इमोशनल यानी कि भावनाओं का जो फायदा उठाने के लिए बैठे होते हैं ना, शातिर बैठे होते हैं, साइबर फ्रॉड आप सभी जानते हैं इतना बुरे हाल से फैला हुआ है, और उन्हें जब इस चीज का पता चला तो ऑब्वियसली उन्होंने इसका भी एक तरकीब निकाल दी, और उसी के लिए एक लिंक क्रिएट करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि हाँ, अगर आपको भी 1980 के दशक की ये फोटो बनानी है, ऐसा ट्रेंड बनाना है, तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको वो फोटो बन जाएगी। और लोग उसी बहाने देखा देखी के चलते ही एक दूसरे को देखकर उस ट्रेंड को अपना रहे हैं, और हर किसी को शौक होता है ना कि हम भी देखें कि हम कैसे लगते होंगे उस दशक में। तो दोस्तों, इसी के चलते एक लड़के ने ही वो ट्रेंड, मतलब उस तरह से लिंक पे कॉपी की, उस पे क्लिक किया और उनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए। तो है ना, ये कितना बड़ा शौक, सालों लग जाते हैं कमाने के लिए, एक एक रुपया कमा कमा कर आज यहाँ तक पहुँचते हैं, और एक छोटे से क्लिक की वजह से, एक छोटे से ट्रेंड की वजह से, शौक की वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो इससे सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। खुशी हर एक पल में जरूरी है, हर एक बात में जरूरी है, लेकिन अपनी सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये बातें जरूर ध्यान में रखिए। जो भी सोशल मीडिया में ट्रेंड चलते हैं, थोड़ा उसको केयरफुली आप आगे बढ़ें। और आज के कार्यक्रम में हम बात भी कुछ खास करने वाले हैं, वो भी गलती से ही रिलेटेड है। कई बार अक्सर बच्चों से, युवाओं से गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में वो इस राह पे चले जाते हैं, तो उसका उनकी जिंदगी पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास दिन, छुट्टी का दिन है, इसलिए अपनों का दिन है। तो एक सवाल था कि घर का बच्चा या हमारे छोटे भाई बहन या दोस्त आखिर किस दिशा में जा रहे हैं? क्या उनकी जिंदगी का रास्ता पढ़ाई, नौकरी, खेल, कला और सपनों की ओर जा रहा है, या धीरे धीरे किसी ऐसे रास्ते की तरफ मुड़ रहा है जहां शुरुआत दोस्ती से होती है और उसका अंत बर्बादी पर होता है? जी हाँ दोस्तों, आज की ये बहुत खास बातचीत नशे के जाल में उलझती युवा पीढ़ी। तो आप सभी जानते हैं आपके आसपास, आपके समाज में नशे की आग किस तरह से फैल रही है। तो बच्चों से जो संवाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कम हुआ है, नहीं हो पाता है, उसी की वजह से ये चीजें शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो खास पल होते हैं, छुट्टी वाले दिन के पल होते हैं, ये होते हैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के। कहीं बाहर घूमने जाइए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें थोड़ा सा माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा, थोड़ा सा उनका मूड जो है वो चेंज होगा, जिसके वजह से वो आपकी वैल्यू को भी समझ पाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ की ओर लेकर जा सकेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, ये बहुत खास बातचीत रहने वाली है आज के कार्यक्रम में आप सभी के लिए, लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगा हर्ट्ज़ से।

तो दोस्तों उम्मीद है कि आप 1980 के दशक से वापस आ चुके हैं और जो पल आप सभी इस समय एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हें अच्छे से समझिए, उन्हें अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों सतर्कता और सावधानी हमारे लिए हर पल बेहद जरूरी है। थोड़ी सी भी अगर हम लापरवाही दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस ठगी का शिकार हो सकते हैं और अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है इस छोटे से ट्रेंड के पीछे हम गंवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों एआई की हम बहुत बात कर रहे हैं तो एआई में भी अपनी जो हम जो डिटेल है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें हम अपनी फोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं तो वो भी कई बार सेफ नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ में भी सतर्क रहें, ना जाने आने वाले समय में या कुछ लोगों के साथ हुआ भी होगा, क्या ही पता, तो इसका भी मिसयूज़ किया जा सकता है आपकी फ़ोटोज़ का, क्योंकि आप अपना डाटा जो है उसमें डाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है एआई कंपनी या किसी भी तरह से, तो उसका भी मिसयूज किया जा सकता है। कहने का एक ही तात्पर्य है कि हमारी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे हमारी फोटोज हो, चाहे किसी भी तरह से, तो उसका सबसे पहले हमें सावधानी के साथ जो है यूज करना चाहिए। कोई उसका मिसयूज ना करे, ये कोई नहीं चाहता, नहीं तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और न जाने दिमाग कहाँ कहाँ घूमता रहता है। फिलहाल दोस्तों इसी के साथ एक बहुत ही खास जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। अक्सर हम अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे अपनों को बचाने की जद्दोजहद में होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम हमारी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर हमारी जेबें काट रहा होता है। दोस्तों ये जानकारी टांडा मेडिकल कॉलेज की पार्किंग से रिलेटेड है। तो कई बार होता है दोस्तों, यहाँ की ही बात नहीं, ये तो खैर हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे आ गई है बात, लेकिन कई बार होता है कि हम एक रुपए के लिए भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हमें इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सामने पड़ी है तो एक रुपया ज़्यादा दे भी देंगे तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन हम सभी के जो एक अधिकार है, हम सभी की जिंदगी की जो वैल्यू है दोस्तों, और जो हम अपने आप को अपडेट रखते हैं हर टाइम, तो अगर हम इतनी सी बात के लिए आवाज ना उठाएं तो न जाने, चलो हमारे पास पैसे हैं लेकिन कुछ गरीब घरों के लोग भी वहाँ आते हैं, यहाँ की ही नहीं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ वो एफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं उस चीज़ को कर पाते, लेकिन मजबूरी कहते हैं ना दोस्तों बहुत बुरी चीज़ होती है। मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो ऐसे में किसी और को उस चीज़ से ना जूझना पड़े तो हम अगर आवाज़ उठाएं तो शायद सभी लोगों के लिए थोड़ा बेहतर हो सकता है। और जो गलत यूज़ कर रहे हैं चीज़ों का, गलत तरीके से चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा रोक लग सके और लोगों का भला हो सके, तो इससे हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी का भला करना बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये है कुछ खास बातें और कुछ खास जानकारियाँ भी जो कि आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश रहती है सुबह सुबह चाय के कप के साथ और गर्मा गर्म नाश्ते के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ। तो फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम आप सभी गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और कार्यक्रम की बहुत ही खास ये बातचीत भी आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, तो साथ ही एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला गीत अपने अपने रेडियो सेट से, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दरवाजा तोड़कर घर में नहीं आता, वो आता है दोस्त बनकर। ले यार कि एक बार ट्राई किया जाए, कुछ नहीं होगा, सब करते हैं, तुम इतना भी क्या सोच रहे हो। और कई बार यही एक बार जिंदगी भर के लिए जाल बन जाता है, एक हैबिट बन जाती है, एक लत बन जाती है, और उस लत से हम चाहकर भी फिर बाहर नहीं आ पाते हैं, वापिस नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, युवाओं की बात करें हम या बच्चों की बात करें, तो जब शुरुआती दौर होता है तो उन्हें नहीं पता होता है असल में कि ये चीज़ क्या है। बस इतना पता होता है कि लोगों ने बताया कि नहीं, सभी कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा स्ट्रेस है या कुछ भी है या एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो बस इसी बात के चलते जो है बच्चे हों युवा हों इस जाल में फंस जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उनके लिए ये एक तरह से कहते हैं ना दोस्तों कि उसके बिना उन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं नज़र आता, उन्हें ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। और फिर उस हद तक वो चले जाते हैं कि ना उनके नज़रों में परिवार की कोई वैल्यू रहती है, ना अपनों की वैल्यू रहती है, सबसे ख़ास बात कि उनकी नज़रों में अपनी ही कोई वैल्यू नहीं रहती। तो जब इंसान की नज़रों में यदि अपनी ही वैल्यू नहीं है, तो सोचिए दोस्तों वो कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो है ना आज की ये बहुत ही खास बातचीत आप सभी के लिए। तो आइए दोस्तों इसी खास बातचीत के साथ, क्योंकि अभी तो सफ़र बहुत बाकी है और इससे जुड़ी बातें भी बहुत सारी हैं, लेकिन साथ ही साथ मनोरंजन भी बेहद ज़रूरी है। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

91.5 ओमेगा हर्ट्ज पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इस बहुत ही खास बातचीत को कार्यक्रम में आगे की ओर लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से रुक करते हैं कुछ खास जानकारियों की ओर। तो आप सभी तक पहुंचाती हूं दोस्तों एक बहुत ही खास जानकारी। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर रिफिल बुकिंग की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर की अगली रिफिल बुक कराने के बीच 25 दिनों का अंतराल रहेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस संबंध में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार मध्य पूर्व में फरवरी 2026 में पैदा हुए संघर्ष के दौरान एलपीजी की उपलब्धता और मांग के प्रबंधन के लिए अस्थायी तौर पर रिफिल बुकिंग की समय सीमा निर्धारित की गई थी। जी दोस्तों, और आप सभी जानते हैं कि जब भी मुश्किल दौर आता है तो कुछ बदलाव हम सभी की जिंदगी में जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन हम कई बार एकदम से हाइपर हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये समय शायद हर लाइफ टाइम के लिए ही रहने वाला है और हम गुस्से में हड़बड़ी में आकर न जाने क्या क्या कर जाते हैं। तो थोड़ा सा बोलते हैं ना, जहां हम बच्चों से उम्मीद रख रहे हैं पेशेंस की, वहां क्या बड़ों में वो पेशेंस लेवल देखने को मिल रहा है आज के दौर में? बिल्कुल भी नहीं। जो बड़ों का हाल है वही तो बड़ों को देख कर बच्चों का हाल है। तो थोड़ा अगर बच्चों से उम्मीद की जाती है तो अपनी जिंदगी में भी थोड़ा झांक कर देखिए कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, तो तभी बच्चे आपसे सीख पाएंगे बेहतर तरीका जिंदगी जीने का। फिलहाल कार्यक्रम एंजॉय करने का एक ही तरीका है और वो है कुछ प्यारे प्यारे से गीत, जो कि आप सभी तक पहुंचा रही है आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, और कार्यक्रम में हम बात भी बहुत ही नाजुक से कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर सी बातचीत कर रहे हैं। बहुत नाजुक दौर से गुजरते हैं वो पेरेंट्स, वो बच्चे जो इस जाल में फंस जाते हैं आखिर। तो दोस्तों, कैसे क्यों इस हद तक चीजें बढ़ जाती हैं, इस हद तक पहुंच जाती हैं। तो असल में आज जो ये देखा देखी का दौर है दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, तो इसी के चलते कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। तो वहीं बच्चों को भी पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं कि पेरेंट्स उनके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, और ऐसे उनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, या इस तरह से हाई लेवल की एक दूसरे को देख के वो जिद करते हैं, ये वो सो। तो ये सारी चीज़ें, और पेरेंट्स को बच्चों से पढ़ाई के मामले में कि उनके बच्चे इतने बेहतर हैं तो हमारे बच्चे भी क्यों कम हो, तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस के चलते जो है ना कहीं बच्चे जो है ना प्रेशराइज फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो इन सब बातों से एक तरह से मतलब स्ट्रेस में चले जाते हैं, और ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो हमारी ज़िंदगी में जूझ रहा है, इससे जुड़ी एक बहुत ही खास न्यूज़ आप सभी ने देखी भी होगी कि एक लड़की ने कुछ समय पहले पुल से छलांग लगा दी, जो कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रही थी। न जाने रीजंस क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं बातें वो बोलते हैं ना कि हमारे दिमाग में जब बातों का प्रेशर बनता जाता है तो एक दिन वो ब्लास्ट ही होता है ना। तो उस मोड़ तक ना पहुंचने दें, बच्चों की भावनाओं को समझें, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स की भावनाओं को समझें, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स को बच्चों को समय देना होगा, जो कि आज के समय में नहीं है पेरेंट्स के पास। लेकिन फिर भी कुछ ही पल जो है वो बच्चों के साथ बिताएं, जैसे आज ये छुट्टी के दिन है, तो छुट्टी के दिन बच्चों के साथ बैठें, खाना खाएं, उन्हें घूमने के लिए लेकर जाएं, जो उनका मन करे वो उनके साथ आप इंजॉय करें। थोड़ा सा उन्हें फ्रीडम एक तरह से फील होगी, एक सिक्योर जाके जब वो अपनी इस लाइफ से बाहर निकलेंगे, अपने घर से बाहर निकलेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि असल में क्या क्या मुश्किलें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, जिंदगी लोग किस तरह से जी रहे हैं। उन्हें हर दौर से गुजरना बहुत जरूरी है, तभी वो उन चीजों को रियलाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज रविवार का दिन है, और बहुत सारी बातें, हर किसी के अपने अपने घर की एक कहानी। तो लोग जो है कुछ नौकरी की बात करते हैं, कुछ महंगाई की बात करते हैं, तो कुछ जो है कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या बच्चे अचानक से बिगड़ गए, या कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करना भूल गए? बच्चे के हाथ में मोबाइल देखकर हम पूछते हैं पढ़ाई की या नहीं, लेकिन कितनी बार पूछा कि आज मन कैसा है, या मन क्या कर रहा है, क्या करने का कर रहा है? कितनी बार पूछा कोई परेशानी चल रही है? कितनी बार कहा कि अगर कोई गलती हो भी गई है तो पहले हमें बताना, डांट बाद में होगी? बिल्कुल नहीं। बच्चा अगर एक छोटी सी गलती कर दे तो हम सबसे पहले उसे डांट शुरू कर देते हैं। जरूरी है बच्चे को डर होना, लेकिन थोड़ा सा उसकी भावनाओं को समझते हुए, उसकी जिंदगी को समझते हुए उससे उस बारे में बातचीत की जाए, उसके मन में डर बनाया जाए, ताकि वो आपसे बात भी खुलकर कर सके, और एक तरह से डर होना चाहिए कुछ गलत काम करने का, कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो कुछ भी हो सकता है, या करूंगी किसी भी तरह से, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। और आज हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नशे की चपेट में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही जाते हैं, आज के समय में लड़कियां भी इस चपेट से पीछे नहीं हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी को खुशी और प्यार से संवारना चाहते हैं तो थोड़ी सी सतर्कता हम सभी को बरतनी बेहद जरूरी है। फिलहाल कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं आप सभी गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और कार्यक्रम जो है वो प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ आगे बढ़े तो क्या बात है। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो आप सभी ने ट्यून किया है 91.1 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। बहुत ही इस प्यारे से दिन को, रविवार के दिन को और ज्यादा खास बना रहे हैं आप सभी अपनों के साथ, अपनों के प्यार के साथ। जी दोस्तों, और आज के कार्यक्रम में हम बात भी बहुत खास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नशे की बात होती है ना दोस्तों, तो ये नशा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, घर का सुख चैन जो है वो सब इसमें उजड़ जाता है। एक तरह से जिंदगी ही बोझ से लगने लग जाती है जब घर में कोई ऐसी चीजें सामने आए। तो वो बोलते हैं ना दोस्तों कि एक सुकून भरा जो है माहौल वो एकदम से गड़बड़ा जाए तो फिर नींद चैन सब हराम हो जाती है। हर युवा की कहानी अलग होती है। किसी पर पढ़ाई का दबाव है तो किसी को करियर की चिंता है। कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते थक गया है तो किसी को नौकरी नहीं मिल रही। किसी का रिश्ता टूट गया, किसी को लगता है कि घर में कोई उसे समझता ही नहीं, और कई बार तो सिर्फ दोस्तों का दबाव उन्हें घेर लेता है। और दोस्तों, पहाड़ों की बात करें या हम अपने यहाँ की बात करें, तो अक्सर ऐसे ही लगता है कि यहाँ के बच्चे तो बहुत सीधे साधे होते हैं, यहाँ ऐसी चीजें कहाँ ही होती हैं। ये सबकी एक मेंटेलिटी, मानसिक सोच जो है वो बन चुकी है, लेकिन ये सोच अब बदलनी होगी। हिमाचल का पहाड़ी समाज भले ही शांत दिखाई देता है वो, लेकिन नशे की चुनौती यहाँ भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। धर्मशाला हो, कांगड़ा हो, पालमपुर हो, नूरपुर हो, चंबा हो, या हिमाचल का कोई छोटा सा गांव, युवा जहां हैं वहां उनकी चुनौतियां भी हैं, और इसलिए समाधान भी वहीं से शुरू होना चाहिए। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में पहले शाम का मतलब होता था घर के आंगन में बैठना, पड़ोसियों से बातचीत, बच्चों का मैदान में खेलना, बुजुर्गों की बातें सुनना, कहीं ढोल नगाड़े की आवाज तो कहीं लोकगीत, कहीं गांव की चौपाल। अब कई घरों में शाम का दृश्य बदल गया है। एक कमरे में टीवी, दूसरे में मोबाइल, तीसरे में लैपटॉप, और सब अपने अपने स्क्रीन में व्यस्त। तकनीक बुरी नहीं है, हम नहीं कहते दोस्तों कि ये तकनीक बुरी है, लेकिन जब स्क्रीन परिवार से बड़ी हो जाए और दोस्त परिवार से ज्यादा प्रभाव डालने लगे, तब हमें रुक कर सोचना चाहिए। नशे की शुरुआत हमेशा बड़ी मात्रा में नहीं होती। कई बार शुरुआत होती है बस एक बार, फिर कभी कभी, फिर आज बहुत तनाव है, फिर इसके बिना नींद नहीं आती, और धीरे धीरे नशा जरूरत बन जाता है, और यही हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

दोस्तों, बहाना एक छोटा सा ही चाहिए, फिर चाहे वो जिंदगी बनाने का हो या फिर जिंदगी को बिगाड़ने के लिए। एक छोटा सा बहाना कि बस इतनी सी बात है या ये चीज वो चीज, मतलब आप सभी जानते हैं कि बस बात से ही शुरुआत होती है और उसके बाद हम न जाने आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाते हैं। चाहे तो ज़िंदगी बदल सकते हैं, संवार सकते हैं, और चाहे तो ज़िंदगी बिगाड़ सकते हैं। ये सारे फैसले हमारे हाथों में होते हैं, लेकिन कई बार कहते हैं ना, हम एक तरह से कंफ्यूज हो जाते, समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। तो क्या करें ना करें ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जिंदगी में तनाव जरूर होगा, हो सकता है, लेकिन तनाव का इलाज नशा नहीं है। ये बात कभी अपने दिमाग से ना निकालें। परेशानी हो सकती है, असफलता हो सकती है, दिल टूट सकता है, नौकरी भी छूट सकती है, परीक्षा खराब हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भी खत्म हो गई। एक परीक्षा आपका भविष्य तय नहीं करती, एक असफलता आपकी पहचान नहीं है, एक नौकरी का ना मिलना आपकी क्षमता का प्रमाण नहीं है, और किसी रिश्ते का टूट जाना आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। अब बात करें दोस्तों माता पिता की, तो कई माता पिता कहते हैं हम तो अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बच्चों को सिर्फ फीस, कपड़े, मोबाइल और खाना नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए समय, उन्हें चाहिए बातचीत, उन्हें चाहिए विश्वास। अगर बच्चा गलती करे और उसे लगे कि घर में बताऊं तो मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, डांटा जाएगा, अपमानित किया जाएगा, तो वो घर के बजाय बाहर सहारा खोजेगा, और अगर बाहर गलत दोस्त मिल गए तो यहीं से खतरा शुरू हो जाता है या हो सकता है। इसलिए माता पिता बच्चों से ये जरूर कहें कि तुमसे गलती हो सकती है, लेकिन तुम्हें अकेले उस गलती से लड़ना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि हम उसमें एक सहारा बन सकते हैं और अगर हमसे शेयर करें तो हम बिल्कुल सहारा बनेंगे, बात को समझेंगे, तो बच्चा कभी भी खुद को अकेला नहीं फील करेगा। दोस्तों, आज के युवाओं के जीवन में मोबाइल और ऑनलाइन दुनिया का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। घंटों गेमिंग में बिजी रहना, सोशल मीडिया में बिजी रहना, ऑनलाइन दोस्त, वीडियो और कई बार इंटरनेट के जरिए नशे से जुड़ी गलत जानकारी तक पहुंच। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि मोबाइल छोड़ दो ये समाधान नहीं है। उनसे पूछिए कि तुम मोबाइल में क्या देख रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, गेम के अलावा तुम्हें क्या पसंद है, और फिर बच्चे को कोई दूसरा विकल्प जरूर दीजिए। क्योंकि अक्सर हम पढ़ाई के आगे बच्चों को कुछ नहीं बताते, सिर्फ पढ़ाई जो है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बना देते हैं, उनके दिमाग में, उनकी मेंटेलिटी में उस चीज़ को इतनी बुरी तरह से बिठा देते हैं कि बच्चों को लगता है कि अगर उनके मन में कुछ और, कोई और स्किल्स उनमें एनहांस होने की ज़रूरत है, उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, पेरेंट्स ने बोला है सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो हम कैसे इसे समय दें। और इसी बात के प्रेशर में चल के वो अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं गलत रास्ते की ओर धकेल देते हैं। तो बात कहीं ना दोस्तों कि जब उन्हें घर पे कोई समझने वाला नहीं होता है, घर पे उन्हें लगता है कि कोई सहारा नहीं है, तो बाहर वो सहारा ढूंढने निकल पड़ते हैं, और नाजुक समय में उन्हें एक छोटी सी मीठी बात भी बहुत बड़ा सहारा लगती है, अपनापन लगता है, और उस अपनेपन के चलते चलते वो अपनी ज़िंदगी खो बैठते हैं। तो दोस्तों, समय रहते चीज़ों को समझना, उनकी भावनाओं को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर कुछ पेरेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि हम तो सब कुछ करते हैं फिर भी बच्चे सही राह पर नहीं आ रहे, तो शायद आपने समय रहते उन चीज़ों को नहीं समझा, समय रहते आपने बच्चे को समय नहीं दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन के चलते अपनी ज़िंदगी को, अपने इन्जॉयज को अहमियत दी, आपने बच्चे की लाइफ को नज़रअंदाज किया, उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया। और ज़रूरत सिर्फ पैसा या मोबाइल फ़ोन नहीं है, ज़रूरत पेरेंट्स का समय है, जो कि उन्हें कुछ समय के लिए चाहिए। तो वो अगर दूर है
तो सब कुछ दूर है। फिलहाल एंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और साथ ही दोस्तों आज 13 सितंबर का दिन है और कल 14 सितंबर का दिन है। बहुत खास दिन, हर दिन खास होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी दोस्तों कल का दिन क्यों खास है, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी का पावन अवसर आप सभी जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन एक खास बात, बहुत प्यार से हम गणपति जी की मूर्ति को लेकर आते हैं, उनकी जो है पूजा करते हैं, कुछ 10 दिनों के लिए करते हैं, कुछ 3 दिनों के लिए करते हैं, कुछ 7 दिनों के लिए करते हैं, अपने अपने तरीके से हर कोई इंजॉय करते हैं इस सेलिब्रेशन को। लेकिन सबसे खास बात हम नजरअंदाज कर दे

देते हैं उनकी देखभाल को। हम 10 दिन इतने प्यार से रखते हैं, चाहे 3 दिन, चाहे 5 दिन, चाहे 7 दिन, कितने प्यार से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें घर में लेकर आते हैं या मंदिरों में लेकर आते हैं, भजन कीर्तन मतलब पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब उन्हें विसर्जित करते हैं, वो कहीं की भी बात हो, तो जब उनके विसर्जन के लिए हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी मूर्ति को कई बार सड़क पे खड़े हम पुल से ही नीचे फेंक देते हैं, कई बार हम नदी नालों में गंदे पानी में ही फेंक देते हैं, और इस तरह से हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जो गणेश भगवान जी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि और इतनी खुशियां लेकर आते हैं, और उन्हें हम इस तरह से उनका निरादर करते हैं जब उनका विसर्जन करते हैं, तो क्या ये सही बात है? इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा दोस्तों, और इस पे ज़रूर विचार कीजिए। प्यार से, श्रद्धा भाव से उनकी मूर्ति को विसर्जित कीजिए, पानी में नीचे जाकर, नदी में जाकर जो अगर आप उनका विसर्जन करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय पुल के ऊपर से नीचे फेंकने में। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी बुरा लगता है, भले ही वो एक मिट्टी की मूर्ति हो या फिर किसी भी तरीके से बनाई गई हो। तो हमें इंसानियत होने के नाते हम इस चीज़ को ना करें तो दोस्तों अच्छी बात है, नहीं तो ये जो प्रकृति का कहर है ना कहीं ये हमें इसी तरह से भोगना पड़ता है। जो हमारे ये कर्म है ना, जो हम कर्मों पे ध्यान नहीं देते, उसी के चलते हम इन सिचुएशनों से गुजरते हैं। तो खैर, आइए गणपति बप्पा जी के वेलकम में आप सभी ने ढेरों तैयारियां जो है वो शुरू कर दी होंगी, और उत्साह भी होगा बहुत सारा आप सभी के मनों में। बिल्कुल दोस्तों, ये इसी तरह से बना रहना चाहिए, और इसी उत्साह के मौके पे ये प्यारा सा गणपति जी के लिए विसर्जित।

दोस्तों इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का ये बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो ये खुशियाँ इसी तरह से आप सभी की जिंदगी में रहें, आती रहें हर पल, और आप सभी इसी तरह से हंसते रहें और जिंदगी को एंजॉय करते रहें। तो दोस्तों, आज की बहुत ही खास बातचीत जो कि नशे के जाल में फंसती जा रही युवा पीढ़ी हो या बच्चे हो या कोई भी हो, तो उनके लिए थी। तो उम्मीद है कि आप सभी इस पे ज़रूर सोच विचार करेंगे और बच्चों की ज़िंदगी को सही दिशा की ओर लेकर जाएंगे। तो फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर होगी मुलाकात आप सभी से। और जाते जाते आप सभी को आ रहे गणेश चतुर्थी त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आ रहे हैं हमारे दुखों को हरने वाले, सुख समृद्धि देने वाले विघ्नहर्ता गणेश। जी हाँ, श्रद्धा और आस्था का पावन पर्व गणेश चतुर्थी आ रही है, खुशियों का मौसम आ रहा है और हमारे लाडले बप्पा हमारे घरों को महकाने आ रहे हैं। बुद्धि के दाता मंगल मूर्ति के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। आइए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मिलकर भक्ति के इस पावन उत्सव को मनाएं, अपने घरों को सजाएं, मोदक बनाएं और पूरे दिल से कहिए गणपति बप्पा मोरिया।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितनी चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीबी है उसको।
0: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरप्राइज समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
7: और डॉक्टर को भी?
6: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी, अन्ना आंटी को भी।
5: और ब्लड डोनर को?
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: वैसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
10: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
9: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की दिखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
10: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
9: हाँ देखिए क्या हो गया।

दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आ रहे हैं हमारे दुखों को हरने वाले, सुख समृद्धि देने वाले विघ्नहर्ता गणेश। जी हाँ, श्रद्धा और आस्था का पावन पर्व गणेश चतुर्थी आ रही है, खुशियों का मौसम आ रहा है और हमारे लाडले बप्पा हमारे घरों को महकाने आ रहे हैं। बुद्धि के दाता मंगल मूर्ति के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। आइए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मिलकर भक्ति के इस पावन उत्सव को मनाएं, अपने घरों को सजाएं, मोदक बनाएं और पूरे दिल से कहिए गणपति बप्पा मोरिया।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरप्राइज समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
2: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
4: जा रही हो बेटा?
5: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
4: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
5: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
6: और डॉक्टर को भी?
5: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
4: और ब्लड डोनर को?
5: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
6: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
5: वो कैसे?
3: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
6: बस हो गया।
3: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
7: वैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
8: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
7: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
8: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
7: हाँ देखो क्या हो गया।

वीकेंड क्लासिक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आज के इस एपिसोड में महान गायिका कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी के गाने हैं। जी हाँ, कविता कृष्णमूर्ति जिन्होंने लता जी और आशा जी के दौर में भी अपना एक मकाम हासिल कर लिया, ये अपने आप में बड़ा चमत्कार था। इनका हुनर सर चढ़ के बोल रहा था। और ये बात आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि इनका जन्म हुआ नई दिल्ली में और इनके जन्म का नाम मालूम क्या था? नाम था शारदा जी। तमिल अय्यर परिवार में जन्म हुआ और उसके बाद इनकी एक आंटी रही, बड़ी नज़दीकी रिश्तेदार प्रतिमा भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा कि भाई कविता में तो बड़ा हुनर है, तो क्यों ना इसको संगीत का विधिवत प्रशिक्षण दिलाया जाए। तो हाँ, बाकायदा ट्रेनिंग हुई और 8 बरस की उम्र में, आजकल तो बहुत रियलिटी शोज वगैरह होते हैं पर उस जमाने में रियलिटी शोज तो नहीं थे, पर हाँ कुछ स्टेज कॉन्टेस्ट वगैरह हुआ करते थे। तो एक स्टेज कॉन्टेस्ट हुआ, वहाँ पर कविता जी ने अपनी आवाज़ का जोर दिखाया और गोल्ड मेडल जीता। वहीं समझ में आ गया था कि ये सुपुत्री है, ये बड़ी हुनरमंद है और आगे जाकर और भी अवार्ड जीतेगी, लेकिन इतनी बड़ी महान प्लेबैक सिंगर बन जाएगी इसका अंदाज़ा नहीं था। अब वो सारी बातें मैं आपके साथ बांटूंगा, लेकिन उससे पहले जब कविता जी की बात हो रही है तो इनके भाई गाने भी हम सुने, बड़े सदाबहार ये गाने हैं, अलग अलग युग से हमने चुने सिर्फ आपके लिए, सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। मुझे कहना

तमाम वीकेंड क्लासिक, मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव और बड़े अनोखे किस्से जबरदस्त गाने कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के आप सुन रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से इन्होंने शादी की और उसके बाद ये कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हो गई। हाँ, पर उससे पहले इनका विवाह होता उससे पहले भी एक बड़ा अजब किस्सा हुआ इनके साथ। हेमा मालिनी जी, ड्रीम गर्ल, ने इनडायरेक्टली एक बड़ा अजब रोल इनकी ज़िंदगी में प्ले कर दिया। देखिए, हेमा जी तो खैर फिल्मों में आ गई थी और सुपरस्टार बन गई थी, और उनकी माता जी जया चक्रवर्ती वो भी बड़ी एक्टिव थी। वो नज़र रखती थी कि भाई कोई है जिसमें अच्छा हुनर हो तो उसे भी मौका मिले, और इस तरह का हिसाब किताब था। तो उनकी मुलाकात हुई कविता जी से। जया जी ने कहा, देखो ऐसा है, तुम गाती तो बहुत अच्छा हो, हेमंत कुमार साहब के साथ भी लाइव शोज वगैरह कर रही थी, सब कुछ था, क्यों ना तुम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलती, महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अब वो जो मुलाकात करवाए। देखिए, कोई ना कोई जरिया बनकर आता है, तो यहाँ जया जी बनकर आई जरिया और LP यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से इनकी मुलाकात करवा दी, और उसके बाद कभी इन्होंने पलट के नहीं देखा। वो और बात है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी इन्हें अभी प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं रखा था, सिर्फ गाने डब करवाए जाते जी, गाने डब होते थे और फिर कोई सिंगर जो है उसे आके गाती थी, चाहे वो लता जी हों कि आशा जी हों, तो ये पूरा हिसाब किताब था। और इत्तफाकन जो है, जब कोई और गायिका नहीं मौजूद होती, तब LP साहब, लक्ष्मीकांत जी ने सोचा, प्यारेलाल जी ने सोचा कि अब

वो कविता गाती तो अच्छा है, तो क्यों ना ऐसी की आवाज़ में गाने रखें जाए। इस तरह से इन्हें हवा हवा ये गाना भी मिला और फिर इन्होंने कभी पलट के देखा नहीं। और इस तरह से कविता कृष्णमूर्ति जो कि अभी तक सिर्फ डबिंग आर्टिस्ट थी, सिर्फ स्टेज पे गाया करती थी या जिंगल्स गाया करती थी, बन गई एक ज़बरदस्त प्लेबैक सिंगर। और उसके बाद कैसे आर डी बर्मन साहब के साथ इनका एक अजब नाता जुड़ा वो मैं आपको बताऊँगा। बड़ी इमोशनल याद है ये आपके साथ ज़रूर बांटी जाएगी। लेकिन उससे पहले कविता जी ने हर दौर में गाने गाए हैं साहब, तो एक ताज़ा तरीन गाना मतलब तकरीबन नए दौर का जो है वो आपको सुनाया जाए सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

यस वीकेंड क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव को सुन रहे हैं आप, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इनके गाने में आपको सुना रहा हूँ। और देखिए मैं बार बार सुब्रमण्यम इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि कविता कृष्णमूर्ति के नाम से ज़्यादा मशहूर है। इसकी मैं वजह बताता हूँ, एक तो ये कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जो कि महान वायलिनिस्ट हैं उनसे इनका विवाह हुआ, पर हुआ क्या कि मैं कविता जी के साथ एक स्टेज शो पे था और मैं एंकर कर रहा था उस शो को, तो मैं जा रहा था स्टेज पे खड़ा हुआ, कविता जी का नाम मैं अनाउंस करने वाला था, इंट्रोडक्शन देने ही वाला था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि मेरे दाईं तरफ विंग्स में कविता जी मुझे देख रही हैं और कह रही हैं कि मेरा नाम पूरा बोलना इशारे से। तो मैं उनको लिप रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कह रही हैं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। मैंने कहा हाँ आप चिंता ना करें, और फिर मैंने बोला कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इस तरह से ये जो गुस्साखी हो जाती वो नहीं होने दी उन्होंने, और अपने पति के नाम के साथ ये फिर स्टेज पर इन्होंने एंट्री ली। उस शो में तफाकन डॉक्टर एल सुब्रमण्यम भी थे, तो बहुत ही अलग समा बन गया था। तो ये बड़ी निजी बातें हैं जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, और ये वो गाने हैं जो आपको आप तक पहुँचाते हैं। जी हाँ है ना, उनमें वो जज्बात भी तो हैं, इन जज्बातों को सुनेंगे। और फिर पंचमदा के साथ एक बड़ा जज्बाती रिश्ता कृष्णमूर्ति जी का, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी का, वो मैं आपके साथ बांटूंगा। बाकी बहुत इमोशनल ये मामला है, सुनेगा जरूर, सिर्फ और सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

यस वीकेंड क्लासिक गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इनके गाए हुए बड़े अनोखे गाने आप सुन रहे हैं इस एपिसोड में। और पंचमदा के साथ इनका किस तरह का एक जज्बाती जो रहा वो मैं आपको बयां करता हूं। देखिए एक वक्त ऐसा था कि ये माना जाता था कि कविता जी जो हैं वो सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ही गाने गाती हैं, क्योंकि उनकी उनके लिए डब करती थी बहुत सारे गाने और ये इमेज काफ़ी टाइम तक बनी भी रही। लेकिन जब धीरे धीरे इस इमेज से वो निकली और पंचमदा के साथ इन्होंने गाने शुरू किए और भी बड़े संगीतकारों के साथ गाए, चाहे वो शंकर एहसान लॉय रहे कि अनु मलिक साहब रहे, गाने तो गाए नहीं थी। पर पंचमदा एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जब इनकी 20-22 फिल्में तकरीबन लगातार फ्लॉप हो गई और सारा का सारा जो असफलता का ठीक रहा था वो पंचमदा के ऊपर था। वो म्यूजिक रूम जहाँ पर प्रोड्यूसर्स के रेले लगे रहते थे कि भाई एक के बाद दूसरा प्रोड्यूसर आ रहा है, म्यूजिक सेटिंग हो रही है, वो म्यूजिक रूम एकदम खाली, जो एक जमाने में बेताज बादशाह था वो एकदम रंग की स्थिति में जी पंचमदा बिल्कुल अकेले बैठा करते थे। और फिल्म आई एक उनके हाथ लगी, वो लगी विधु विनोद चोपड़ा साहब की 1942 लव स्टोरी। उसका संगीत जबरदस्त बना और हैरत की बात यह है कि पंचमदा की आखिरी फिल्म जो उन्होंने बनाई उसमें सबसे बेहतरीन गाने कविता जी को मिले और कविता कृष्णमूर्ति जी ने ज़बरदस्त उन गानों को निभाया। तो अभी यही गाना मैं चाहता हूँ कि हम सुने फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से और याद करें पंचमदा को भी और कविता जी की आवाज़ का जादू हमारे सर चढ़ के बोले। और अगले हफ्ते एक और सॉलिड सारेगामा वीकेंड क्लासिक एपिसोड आप सुनिएगा और जैसा भी आपको हमारा ये एपिसोड लगता है अपने मन की बात हमसे आप बांटते रहें सिर्फ और सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने ये साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
0: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताजा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया।
1: यार अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा, ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आ रहे हैं हमारे दुखों को हरने वाले, सुख समृद्धि देने वाले विघ्नहर्ता गणेश। जी हाँ, श्रद्धा और आस्था का पावन पर्व गणेश चतुर्थी आ रही है, खुशियों का मौसम आ रहा है और हमारे लाडले बप्पा हमारे घरों को महकाने आ रहे हैं। बुद्धि के दाता मंगल मूर्ति के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। आइए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मिलकर भक्ति के इस पावन उत्सव को मनाएं, अपने घरों को सजाएं, मोदक बनाएं और पूरे दिल से कहिए गणपति बप्पा मोरिया।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई है।

0: इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
1: जा रही हो बेटा?
2: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं घर जा रही हूँ।
1: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
2: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला
3: और डॉक्टर को भी।
2: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
1: और ब्लड डोनर को?
2: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
3: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
2: वो कैसे?
4: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
3: बस हो गया।
4: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
5: वैसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
6: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
5: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
6: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
5: हाँ देखो क्या हो गया।

श्रोताओं 91.2 MHz ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओं आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 MHz ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

श्रोताओ, मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी हुण लैणी आ तुहाडे तों इजाजत। पंजाबी गीतां दे इस कार्यक्रम ते फिर मिलांगे। सुनदे रहो रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने बंदी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताजा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आ रहे हैं हमारे दुखों को हरने वाले, सुख समृद्धि देने वाले विघ्नहर्ता गणेश। जी हाँ, श्रद्धा और आस्था का पावन पर्व गणेश चतुर्थी आ रही है, खुशियों का मौसम आ रहा है और हमारे लाडले बप्पा हमारे घरों को महकाने आ रहे हैं। बुद्धि के दाता मंगल मूर्ति के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। आइए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मिलकर भक्ति के इस पावन उत्सव को मनाएं, अपने घरों को सजाएं, मोदक बनाएं और पूरे दिल से कहिए गणपति बप्पा मोरिया।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीबी है उसको।
0: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
2: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
4: जा रही हो बेटा?
5: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
4: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
5: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
6: और डॉक्टर को भी?
5: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
4: और ब्लड डोनर को?
5: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
6: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
5: वो कैसे?
3: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
6: बस हो गया।
3: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
7: वैसे ना आजकल हड्डी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
8: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
7: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रूपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रूपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं की नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
8: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
7: हाँ देखो क्या हो गया।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होई कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारे दा ही स्वागत है। इसी कने शुरुआत जिहड़े से यहां करी ती है अपनी गलबात करने गलबात जिहड़े से तुहां तक कहां पहुंचांदे न कने इसी कने इस कार्यक्रम दा जिहड़ा समय है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। इस कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारे ही जिहड़ा अपनी पसंद दे पहाड़ी गीतन से सुनी सकदे कने गलबात भी जिहड़े से अपने लोकल डायलैक्ट च जिहड़े से करी सकदे। तो कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जिहड़ा नंबर है से तुहां तक पहुँचाईंदे न क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचाऊंगा ताईं तो तुहां इस नंबर पर कॉल या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज जिहड़े से करी सकदे अपनी पसंद दा जिहड़ा गीत है से सुनी सकदे कने अपनी जिहड़ा गलबात है से भी जरूर सांझा करी सकदे। नंबर है 701-811-7091। नंबर तुहां तक पहुँचाईता है कने तुहां सारे जो ही पता है कि पहले कार्यक्रम दा जिहड़ा आगाज है से करदे न फिर ही बाकी दियां जिहड़ा गल्लां न से तुहां तक ले करी आउंदे न। तो जरूर हाँ कार्यक्रम दा जिहड़ा आगाज है से इस गीत कन्नै करा दे न तुहां सारे भी इंजॉय करा।

0: श्रोताओं तो हाँ सारे हैं सुनिया ये गीत ये शुरुआत शुरुआत हाँ इस गीत कने की थी है कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की थी होनी है कने फिर ते हाँ वापिस आई होना अपनी गलबात ऊपर क्योंकि गलबात पर वापिस होना भी जरूरी है। तो हाँ सारे भी जल्दी जल्दी अपने जिड़ा काम मन तिना जो भी करा हाँ ये नहीं बोला दे कि अपने जिड़ा काम मन तिना जो मत करा अपना जिड़ा रेडियो सेट है से जरूर ऑन करी लिया कने अपना माटी दी मेह कार्यक्रम जिड़ा सुनने से शुरू करी दिया कने आज वैसे भी छुट्टी है संडे वाला दिन है तो संडे वाला दिन जो हमेशा क्या बोलते हैं अपने जो जिड़ा समय है से देना है कने यहाँ पर किस तरीके ने समय दे देना सभी जरूर तो हाँ अपनी जिड़ा गल्ला न से साझा करी सकते कि तो हाँ किस तरीके ने अपना जिड़ा आज कना दिन जिड़े से इंजॉय करा देन या छुट्टी जिड़े से किस तरीके ने मना देन या तो हंदी क्या फरमाइश है या कुंडिया गीत तो जो सुनना पसंद है पहाड़ी क्योंकि पहाड़ी गीत जिड़ा न कुथी अहाँ जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते न पर अहाँ क्या जिड़ा सीख है से लेन देन से यहाँ पर निर्भर करता है। तो श्रोताओं दान करने ने जिड़े से रुपया जानते है ना कि लक्ष्मी जिड़े से घरे दी जानती है इसी कन्ने गल करिए घड़ी बंद करने ने जिड़े से घड़ी बंद जिड़े से हो जाती है पर समय तो बंद जिड़े से नहीं होता समय तो उसी तरीके ने चलिया रहता इसी कन्ने अगर हाँ झूठ छुपाते न तो झूठ जिड़े से ज़्यादा दिन छुपता नहीं है से तो हाँ जो भी पता है कने वैसे तो मेरे आईडी ने हमेशा अपने जिड़ा विचार हैं से सकारात्मक तो हाँ जिड़े से रखी सकते कने इसी कने पहले जिड़ा श्रोता न तिना कने कर देना गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते सचिन जी।
0: जी नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।

0: कने कुछ जेड़ा ऐसे निसरा दे
1: हाँ जी 111 निकला था ना, बाकी निकल जाए।
0: जी अच्छा 311 जेड़ा ऐसे निकला था
1: हाँ जी
0: इस वरी। वैसे भी जेड़ा धान तिना दे ना भी अलग अलग ही है ना जी।
1: हाँ जी सारे दे ना रखी थी।
0: जी पहले तो ये होता था कि ज्यादातर अपने ही जेड़ा देसी धान होंगे थे तिना ही लगाते थे ना जी।
1: साधा बड़े सोने दे इसकी लिंगड़ी बड़ी प्यारी होंगी तूने।
0: जी कने अगर उन्हें दी यहाँ गल करिए जेड़ा धान आने या तिदे जेड़ा चोल निकलते ना तो तिना दा सह वाला टेस्ट मुझे लगता बिल्कुल खत्म है ना जी।
1: हाँ जी
0: बेशक
1: जरा
0: ज्यादा न पर सह वाला टेस्ट नहीं है
1: जरा पुराने तो आने दे हो जरा
0: जी।
1: खाने का स्वाद लग रहा है मेरे पास लुगड़ी पी जाता है जो मर्जी करा पर सोने लग रहे हैं।
0: जी अच्छा लुगड़ी आहंदे जिहड़ा बुजुर्ग हैं सब यही बोलते ना कि लुगड़ी जिहड़ा से घी दे बराबर होती है।
1: बिल्कुल सही गल है जी।
0: जी सही है ये गल।
1: हाँ जी
0: जी अच्छा तोहां जिहड़े से चोल कुकरे च बनांदे कि पतीलुए च।
1: हाँ तो जी तीन बजे आते कुकरे के जीवले के लगने चाहिए।
0: जी जी अच्छा
1: हाँ जी
0: जी
1: कोई कुछ प्रण कर दिया उनका खाने में जा पर क्या मजा नहीं उनका खाने में।
0: जी जी जी
1: हाँ
0: कन
1: जी
0: अगर बीमारियां दी गल करिए ता अगर कुसी ओ शुगर है ना जी।
1: हाँ जी उनका था
0: जी
1: सुनने के बड़ा मैं मिठाई मिठाई करे तो ये बंदे का तो मैं खाई लिया पूरा।
0: जी जी
1: हाँ जी
0: जी कने शुगर वाले मरीज तो ता वैसे भी यही बोल दे कि जेड़ा नशे चोल आन सही देने भी ज्यादातर भी अगर तिना दा मन करता है ना जी।
1: ये तो बिल्कुल ठीक मिलेगा जी।
0: जी क्योंकि कहने वैसे भी ज्यादातर दा मन नहीं बोलता है कि चोली खाने ना जी।
1: बिल्कुल सही गल है।
0: जी जी जितना हाँ जो रोटियां नहीं लगा जी।
1: रोटियां खाने तो कौन नहीं करता।
0: जी सही तो मैं बोला दी ना कि जितना हंदा लगाव चोला कन्ने पत्ते कन्ने अगर हाँ अपनी लैंग्वेज से बोल पत्ते कन्ने हंदा जितना लगाव है उतना हंदा रोटियां कन्ने नहीं होंदा ना जी।
1: हाँ जी ये तो पक्की गल है।
0: जी जी तो रमेश जी आज तो हाँ कुंदिया गीत जिड़ा इसे सुनना पसंद करके।
1: आज गाना सुनाई ने जी पखला मानू खोदला पानी पर लगदा
0: जी तो सारे पखले माणू है ना जी कने खोदला पानी है उन।
1: हाँ जी बरसात में जब खोद रहा पानी जब मैं मांग रहा चलो अपने हैं ना।
0: जी चलो बरसात दे मौसम च अपना जिड़ा ख्याल है से जरूर रखना है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी तो जरूर तुहुंदी जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा। अगले जिहड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी करते न गल बात। हेलो
2: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न जी। यहाँ भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहां दा नां की है जी। जी माया जी सुकड़े ते। जी तो माया जी आज ना जेड़ा दिन है से तुहां दा कदिया की गया 2 बजे तक क्योंकि हुण 2 बजे करीब 15 मिनट कार्यक्रम च होई ना तो कदिया की चलिया तुहां दा दिन। जी अच्छा ठीक चलिया। जी जी ता रेडियो सेट तो हाँ प्याग दा ही ऑन कीता है कि ऑन कीता ऑन
2: ना प्याग प्याग समझ ले समझ ता।
0: जी अच्छा 5 बजे जेड़ा से रेडियो सेट जेड़ा ऑन करीन दे तो हाँ जी ता कदे लग दे तो हाँ जो कार्यक्रम बाकी
2: रेडियो सेट पर ऑन है ना है।
0: जी जी ता माया जी आज जी
2: बड़ा बढ़िया कार्यक्रम लगता जी थोड़ा सा बढ़िया
0: जी अच्छा
2: बड़ा अच्छा लगता
0: जी जी ता
2: लंबे सुनते हाँ
0: जी जी ता माया जी अगर हाँ गाल करिए आज जिन्हें कि बच्चे हैं बच्चे जो भी छुट्टी है ना जी कने जेड़ा जॉब वगैरह करते हैं तिना जो भी छुट्टी है कई जो छुट्टी है भी कई जो नहीं भी है ना जी। हर कुसी का अपना अपना शेड्यूल होंगे ना जी। तो तुम्हें क्या लगता कि बच्चों कन्ने टाइम कन्ने पेरेंट्स कन्ने टाइम निकालना कितना जरूरी है बच्चों जो भी कन्ने पेरेंट्स

0: जो भी
1: अच्छा लगता सारे ये नहीं कि क्या रूम था।
0: जी। अच्छा, मिली जुली करी अगर रहन देन तो अच्छा लगता
1: जी छुट्टिया बिना सारे कच्चे उनका ठीक
0: जी जी
1: लगता बच्चे ही।
0: जी
1: जी
0: जी तो माया जी, आज तुहां कुंदिया गीत जेड़ा इसे सुनना पसंद करगी
1: भजन सुनाई है माता वा
0: जी। माता दा भजन कुंदिया सुनना है जी तुहां।
1: और वो सुना दिया जेगा अभी मैंने पता हूं मारी में जाने आना
0: जी कुंडिया, आवाज चिड़े से तो हुंदी थोड़ी कटी कटी की हो दी जी।
1: मैंने पता हूं मैया ने आना है मेरी
0: जी
1: मैया ने
0: अच्छा
1: आना है।
0: जी जी जी ना रोल माई
1: हां जी
0: जी जरूर ये भजन तो हां तक पहुंचान दें जी। जुन्ने वास्ते
1: बड़ा
0: बड़ा बड़ा
1: धन्यवाद
0: जी तो हां
1: धन्यवाद जी
0: भी
1: थोड़ा
0: जी तशु तो वहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ान दे न कने तो जो ले करी चल दे न फरमाइश दी और।

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत फरमाइश ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए तंगलोटिया ते कने तिना दा नाम है रमेश जी। तो जरूर रमेश जी तक हाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ अजकना जेड़ा अजकने दिने दा जेड़ा सफर है से जरूर इंजॉय करा दौने न, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है हर कोई ये सोचता है कि हाँ अपना जेड़ा समय है से अपनी फैमिली जो देना है, क्योंकि जिंदगी दा सफर अपने दा जेड़ा प्यार है से होना भी जरूरी है। अनमोल दौलत क्या वे माता पिता जेड़े से अहां जो हमेशा जेड़ा पैसे न पैसे से जेड़ा न बड़ी करी है न, क्योंकि पैसा जेड़े से दोबारा अहां कमाई सकते पर जेड़ा माता पिता दा प्यार है से अहां ल होना जरूरी है। इसी कन्ने अहां जेड़े से अगर अपना समय अजकने दिने दा जेड़ा समय है संडे दा दिन है बच्चों जो भी छुट्टी है माता पिता भी कुथी ना कुथी अपना जेड़ा समय है से बच्चों जो जरूर दे देने न, क्योंकि जलों हाँ अपने कन्ने बैठते न तो कोई जेड़ा दर्द है से जरूर दूर भागी आंदा है। माता पिता जो भी एहसास होंदे कि बच्चे जो क्या टेंशन है क्या तनाव है अजकने दौर की गल करिए बच्चे ज़्यादातर हर चीज़ मोबाइल फोन पर जेड़ा इस ते निर्भर रखा देन अपना जेड़ा तनाव है वो जो छुपा देन या अपनी जेड़ा गलबात है से अपनी फैमिली कन्ने या अपने माता पिता कन्ने शेयर जेड़ा इस ते नहीं करा दे। पर थोड़ा देया तो हाँ सोच विचार करके दिखा कि अगर तो हाँ कोई भी जेड़ा गल है से तो हाँ जो टेंशन दे दी है कन्ने तो हाँ अपने माता पिता कन्ने शेयर करते न या माता पिता अपने बच्चों जो पूछते न तो कुथी ना कुथी इस गल दा जेड़ा सवाल जवाब है से जरूर निकली करी आंदा है कन्ने थोड़ा देया मन जो जेड़ा शांति है से जरूर मिलती है। दौलत जेड़े से माता पिता दे अग्गे जेड़े से फीकी पे आंदी है, क्योंकि माता पिता जिंदगी दे सफर च बड़ी ज़्यादा अहम भूमिका जेड़ा है से निभाते हैं, क्योंकि माँ का जेड़ा सवाल है से बच्चे ते हमेशा यही होंदे कि जिंदगी दे सफर च बढ़ने पर कुथी ना कुथी अपना जेड़ा समय है से खुद वास्ते भी निकालना है कने अपने वास्ते भी निकालना है या अपने न या छोटे न या चाहे बड़े न हर कुसी दा जेड़ा मान सम्मान है से ज़रूर करना है। परिवार ते यहाँ बड़ा कुछ सीखते न हर चीज़ यहाँ परिवार ते ही सीखते न अच्छा बुरा जेड़ा ज्ञान है से यहाँ तक परिवार ते ही जेड़े से पहुँचते है यहाँ दे जेड़ा संघर्ष है सभी यहाँ जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते न पर यहाँ क्या तिना संघर्षा ते सीखते न से यहाँ पर निर्भर करते है। करें तो हाँ सारे भी इस वक्त माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर दा जेड़ा इंजॉय है से जरूर लै देने न तो तुम सारे भी इस कार्यक्रम के सफर चाह कन्ने जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जेड़ा हाँ दा नंबर है से तुह तक पहुँचाते न कने तुह फेसबुक लाइव भी दिखा देने न तो तुह सारे जो ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा तुह दा नमस्ते है। नंबर तुह तक पहुँचा देन नंबर है 701 8 1 1 7

0: 0091 नंबर तुह तक पहुँचाई तय कने तुह सारे भी ये नंबर जड़ा है से नोट करी लिया होना है। तो इसी कन्या हम फ्री ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते ना कने अपना जड़ा सफर है से जरूर इंजॉय करा जिंदगी दा कने श्रोता जुड़ चुके न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तुह कुथु दे रहने वाले ने कने तुहांदा नाम की है जी?
1: मैं सुरेश बोला सेठाने ते।
0: जी तो सुरेश जी आज का जेड़ा दिन है सिद कदिया की चलिया तुहांदा?
1: बड़ा बढ़िया चलिया जी।
0: जी आज छुट्टी है तुहां जो?
1: हाँ जी हाँ जी आज छुट्टी है
0: जी। तो थोड़ी देर गल छुट्टी पर ही हुई है कि तुह किस तरीके ने अपने परिवार जो समय दे देना या अपने बच्चों जो समय दे देना?
1: बच्चे के मैं तो दो पारे बने थे लकड़ में दे अंदे।
0: जी जी
1: हाँ जी मैं वाले बरसात हो तो लगी मां लकड़ ले उंदे।
0: जी
1: या फुलके बनाने मुश्किल होंदी था।
0: जी जी
1: हाँ जी ओथो ते आई के रोटी रोटी खादी होने मैं वाले प्रोग्राम में सुने लंदे।
0: जी अच्छा प्रोग्राम सुना दे बाकी और कौन कौन जेड़े ऐसे तो हाँ करने प्रोग्राम में सुना दे?
1: ये इस वक्त तुम्हारी आंटी है।
0: जी
1: हाँ जी
0: जी जी तक दे अलग का था कार्यक्रम
1: अच्छा लग रहा बोलना। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: जी जी स्वागत है जी तो हाँ दा।
2: हाँ जी
0: जी स्वागत है जी रेडियो गुंजन धर्मशाला जी तो हाँ दा।
2: हाँ जी
0: जी कदिया लगा था तो हम जो एक कार्यक्रम
2: बढ़िया लगा आज प्रोग्राम।
0: जी बढ़िया लगा था।
2: हाँ जी
0: जी जी और ठीक ठाक है ना?
2: हाँ जी ठीक ठाक जी।
0: जी तो आज जेड़ा है से तो हाँ कुंडिया गीत सुनने जी?
1: हाँ जी
0: जी कुंडिया गीत सुनना पसंद करके जी?
1: ज्वाला माता आई कांगड़े दे मोड़ा मोड़ा।
0: जी ज्वाला माता आई कांगड़े दे
1: मोड़ा मोड़ा। हाँ
0: जी जरूर जी तुहंदी जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचांदे जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: ठीक है जी
0: जी कने इसी कने इंदु जी अहां जो जिहड़े से फेसबुक कमेंट जिहड़े या मैसेज भेजा दे न राधे राधे जी। तो इंदु जी तुहां जो भी राधे राधे कने इसी कने तुहां जो फ्री ते अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न इंतजार थोड़ा जिहा खत्म कर देन तो गीत फरमाइश तुहां तक पहुँचा देन तुहां सारे भी इंजॉय करा।

श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ए गीत ए फरमाइश। ए फरमाइश अह तक पहुँची होवे वट्सएप के माध्यम ने। तिना का नाम है ओम प्रकाश जी, कने से रहने वाले न अरनी ते। तो तिना तक अहाँ ए गीत ए फरमाइश पहुँचाई, कने इसी कने अहाँ फ्री ते अगली जेड़ा फरमाइश है से अहाँ पहुँचा देन माया जी तक, से रहने वाले न सुकड़े ते।

श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ई भजन कने सी भजन ते बात अहां फिरी ते वापिस आई हो ना अपनी गलबात उपर तो तुह गलबात भी इंजॉय करा दे होने ना कने इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से तुह तक रहंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो समय भी अहां जो बोला था कि धीरे धीरे जेड़ा है से तुह अपनी गलबात भी करा कने जेड़ा तुह दियां फरमाइशां ने से भी जरूर तुह तक पहुँचानियां ने। तो मुझे लगा था फिर यहाँ अपने कार्यक्रम के सफर जो थोड़ा दे अगे बढ़ाते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न क्योंकि इंतज़ार तुह भी करा दे न कि कल दियाँ तुह दियाँ जेड़ा फरमाइश है न से तुह तक पहुँच दियाँ न।

दर्शकों फरमाइश अह पहुँचाई है सुरेश जी तक कने से रहने वाले ने सिर उठाना थे तो इसी कने अह फिर ते अपनी गलबात उपर आई आते हैं। जरूर तुह अपनी जेड़ा घरे दे काम मन सभी करा देने न कने अपनी जेड़ा छुट्टी है सभी इंजॉय करा देने न। जीने दी जेड़ा वजह है से जिंदगी दा असली जेड़ा आधार है से अहां दा परिवार है। पर परिवार जेड़ा है से सिर्फ अहां दी जरूरत नहीं है बल्कि अहां दी जेड़ा जीने दी वजह है। माता पिता दी गल करिए तां माता पिता दा जेड़ा आशीर्वाद है से अहां दी सह ताकत है कि अहां अपने जेड़ा कोई भी सपना है अगर अहां जो दिखा देन या कोई भी नामुमकिन जो भी अहां जेड़े से मुमकिन करीन देन अगर अहां जो माता पिता दा जेड़ा आशीर्वाद है से मिली आंदा है। इसी कने भाई बहन की गल करिए भाई बहन का जेड़ा साथ है या तिना कने गुजारे जेड़ा वक्त है से अहां जो कुथी ना कुथी सुकून देखरी जांदा है। उससे अगे जेड़ा है से दौलत भी फीकी है पर से अहां पर निर्भर करता है कि अहां किस तरीके ने वह चीज़ का जेड़ा मतलब समझते हैं। हर रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत है पर रिश्तों से ज़्यादा अज के दौर की गल करिए कुथी ना कुथी अह पैसों जो जेड़ा अहमियत है से जरूर देंदे हैं पर पैसा जेड़ा है से ठीक है पैसा होना भी जरूरी है पर रिश्ते जेड़ा न अगर अह रिश्तों जो खोई दे तो कुथी ना कुथी अह अपना पूरा जेड़ा परिवार है या रिश्ते न अगर तिना की कदर नहीं करते न तो कुथी ना कुथी अह अपना जेड़ा कीमती वक्त है या कीमती जेड़ा रिश्ते न तिना जो भी जरूर खोई दे न। इसी कने अह भी अपना जेड़ा कीमती समय है से जरूर बचाना है कने तुह तक अगली जेड़ा फरमाइश है से पहुँचानी है।

श्रोताओं तो बहुत सारी हैं इस सुनिया एक ही फरमाइश यहाँ तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का नाव है अश्विनी जी कैसे रहने वाले न योल ते तो जरूर तिना तक हाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय की कने इस कार्यक्रम का जोड़ा समय है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक तो जरूर इसी कने तुह सारी अपनी रेडियो दो शशि जो अनुमति भी दे दिया कने अपना जोड़ा ख्याल है से जरूर रखा कने अपन का जोड़ा ख्याल है सभी रखना जरूरी है इसी कने तिना जो समय देना भी जरूरी है कने तुह सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति।

0: रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया।
1: यार अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7,000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

रहे हैं हमारे दुखों को हरने वाले, सुख समृद्धि देने वाले विघ्नहर्ता गणेश। जी हाँ, श्रद्धा और आस्था का पावन पर्व गणेश चतुर्थी आ रही है, खुशियों का मौसम आ रहा है और हमारे लाडले बप्पा हमारे घरों को महकाने आ रहे हैं। बुद्धि के दाता मंगल मूर्ति के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। आइए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मिलकर भक्ति के इस पावन उत्सव को मनाएं, अपने घरों को सजाएं, मोदक बनाएं और पूरे दिल से कहिए गणपति बप्पा मोरिया।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितनी चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीबी है उसको।
0: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरप्राइज समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
7: और डॉक्टर को भी?
6: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
5: और ब्लड डोनर को?
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: वैसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
10: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
9: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की दिखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
10: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
9: हाँ देखिए क्या हो गया।

आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताजा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नवा राष्ट्रीय पोषण माह।

0: हे भगवान,
1: फिर से पापा का पारा चढ़ गया।
0: यार अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7,000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
2: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
1: और आपका गुस्सा भी।
0: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
3: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आ रहे हैं हमारे दुखों को हरने वाले, सुख समृद्धि देने वाले विघ्नहर्ता गणेश। जी हाँ, श्रद्धा और आस्था का पावन पर्व गणेश चतुर्थी आ रही है, खुशियों का मौसम आ रहा है और हमारे लाडले बप्पा हमारे घरों को महकाने आ रहे हैं। बुद्धि के दाता मंगल मूर्ति के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। आइए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मिलकर भक्ति के इस पावन उत्सव को मनाएं, अपने घरों को सजाएं, मोदक बनाएं और पूरे दिल से कहिए गणपति बप्पा मोरिया।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज
1: दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
2: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
4: जा रही हो बेटा?
5: अरे दादाजी अब उड़ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
4: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
5: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
6: और डॉक्टर को भी?
5: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
4: और ब्लड डोनर को?
5: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
6: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
5: वो कैसे?
7: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
6: बस हो गया।
7: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
8: वैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रूपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रूपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ देखो क्या हो गया।

0: श्रोताओं प्यारे दे गीता बाद तुंदाक मौके फिर हूँ स्वागत करनु अबे अबे जितने भी श्रोता जुड़े मुड़े ताजस वो की इन द गेस्ट ने सुरेखा जी जो कि नौरानी मंदिर रे निवासी ने और सुरेखा जी आ जासु थोड़े मते अपने बचपन रे गल्ला भी दसनी ने कि यारा बचपन की असो के गुजरत हो और तत्थों बाद श्रोताओं मेन जो इन द टॉपिक आ सो टॉपिक भी तुसो जरूर दसना लेकिन सुरेखा जी तुंदा रेडियो गुंजन मा बड़ा बड़ा स्वागत है हार्दिक अभिनंदन
1: धन्यवाद
0: जी तुंदा भी बड़ा धन्यवाद आ कि तुह इस समय मुझे अपने घर बखाल रहा तो सुरेखा जी आजकना बचपन अगर यह एरिए हल्के बच्चे की गल्ला करिए तो हल्के बच्चे आजकल बगैर फोन ने किया सोना खाना खाता है बगैर फोन ने किया सोना तैयार बुनता है बगैर फोन ने किया सोना खरे कीता है सो अगे कनंदा है ना डेरे डेरे हेरद है तो तुंदा बचपन की सुख दे कदे गुछूर तो क्या तू सो भी थी फोना फोना रे लत
1: फोना फोना रे लत आई ने थी असो ये बकरी रखरी थी बकरी बकरी चारनी असो आए पंछी जिनी बंदी थी मलेरी बवेरी भी थी बहन बहन भी थी सहेली सहेली भी थी गोरू वाले चले गाना असू मेरा गोरू ले गाने घरों ठेड़ी है फिर खट्टे चोरने काकड़ी चोरनी कच्चे खट्टे खाई लेने अस लून आता है फिर संझा चली जाना घर अपने मौज मस्ती मारी करे गोरू गारू चारी करे खरे हसना खेलना बस स्वाटर गुडना है कोई क्रूसी गुडना है कोई अत्तर गुडना है ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਾਈ ਬਾਲੜੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਪਸੀਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਫਿਰ ਹਾਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮਨੂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੁਆਰੀ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਸੰਕਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੱਸਦੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ
0: ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਸੋ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਮ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੁਸਰੇ ਖਜੀਏ ਵਿਆਹ ਕਰੀ ਤਾਂ कि पहलकना बचपन ये सिर्फ सुरेखा जी रा बचपन है ये सुरेखा जी यही है कई यारी मलेरी बबेरी बहनी यारी यारी सेली और जितने भी इस एज ग्रुप रहे जितने भी ने त्यारे सभी रा बचपन किया सो इन्हें इन्हें गुजर रहा लेकिन अचकना बचपन में तो सो दसो कि कदे कदे थे तो सुरेखा जी जाने तो है बचपन अंदर अपने सब मलेरी बबेरी तुंदी सहेली जितनी भी खटींदी थी तो कोई गीत लंदी थी सो गीत तुस वो याद बहुत जरूर असो सभी लक्ष्य होता जितने भी तुस वो हूँ करते ने तीयों भी हूँ आई दिया
1: लंदे।

हॉप्स होगी। और सुरेखा जी है बड़े ही अपनी प्यारी दी आवाज में बहुत ही प्यारे दे गीत असु होना हो गया तो ये सतों हुंदन ये प्यारे दे गीत थोड़े नॉइस स्टाइल अंदर आवे।

0: 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून को रोर कार्यक्रम इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा तुंदे रेडियो सेट में बिल्कुल लाइव चल रही इन द रेडियो गुंजन में बिल्कुल लाइव चल रही ना श्रोताओं अय्या अबे कार्यक्रम जो हगो बड़न और ये प्यारे दे गीत है हुने लुआ अबे चल देन सुरेखा जी ले और सुरेखा जी आजकल श्रोताओं अबे तक खैर तीन आसूले बाल दन रहे तीन आसूले गाई न रही पिता दुई दे त्राई त्राई गाई बुंदी थी हालांकि कसकी ग्रां अंदर हल्ले भी हैं ऐसे कोई गल नहीं है लेकिन जो पहलकना जमाना थो आज तो अगर है 20 साल पहले रे भी गल करन या 15 साल पहले रे भी गल करन सो जमाना कुछ और थो शो तो अब जमाना कुछ और चलिया तो शो तो तहने गोरु बनने वास्ते की है ना पैरू बनने वास्ते वेटकू बनने वास्ते चिड़ी बनने वास्ते मगरा बनने वास्ते हर एक चीज़ वास्ते किया सो जोड़े लगते थी है। और इन जोड़े जो शोतों है यानी क्या प्रक्रिया रहते थे बनाने की एक ये बनते थी है कड़ी थो इंदे थी है की इंदे थी है ये सब कुछ असू जानना वे सुरेखा जी थो तो सुरेखा जी सभी वेले तो ये दसो कि जोड़े के थी है सो की करे बनंदे थी है तो कटेरे बनते थी है
1: जोड़े बनते थी है जी गोर पाड़ रही है बकरी पाड़ रही थी इन्हें जो पाने लेने दमन भरना फिर दमना रही सो रिड़ी बन बनती थी सो बकरियो डट्ठू बनने बनने रखी हिंदी है कई कंडा बनते ही है तो फिर रखी ने कई पाई हिंदी है फिर सोटी रिड़ी चुकनी फिर सो इं कर चीरनी फिर सो बनी पानी फिर कठेरी रखनी फिर कठेरी करी सो आल बनते ही है आलियाँ पाई लेनी फिर सो तड़ी सी जी हिंदी खरी फिर सो कड़नी फिर सो झपनी
0: फिर शो तो झपने तो बाद किए बनती थी क्या बनता तू सो जरूर दस ले लेकिन इस प्यारे दे गीता तो बाद

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर है वीडियो गुंजन धर्मशाला और आउतंदा वीडियो जो कि रेडियो दोस्त सचिन कपूर तैया कार्यक्रम जो अब तोड़े तोड़े और आगू बढ़ते हैं और पुछ दिन की हुकने थो बाद क्या प्रोसेस बुंदा थो किया क्या बुंदा थो रेखा जी
1: फिर सो कहनी फिर सो चोड़नी फिर सो तेरे हिगर बंदे सो हिगर कटना फिर सो हिगर बनाई बनाई करे रखने फिर सो ओ बंदे थे हिगरा बटने रे कोड़े बंदे थे फिर सो कूड़िया बंदे ये बैल के मर्द फिर सो बटने फिर सो बट्टे करे सो तेरे विंडो लाने बट्टे करे फिर सो तेरे जोड़े गट्टे बनाई करे जोड़े करने सो रेडी तुमने तीन इंदे ये दमना रेडी फिर जोड़े उन्हें दे फिर सो ते उड़ियो भी बनाने फिर सो छिड़ी डूने भी बनाने गुरु बनने भी बनाने रिक्की कम्मा सो जोड़े

जी श्रोताओं नमस्कार सभी को, मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और लेकर हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने जगह अपने अपने स्थान पर सभी सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। और हम एंटर कर गए हैं 13 सितंबर में। वैसे सुबह से एंटर हैं हम लेकिन अब क्योंकि मुझे भी तो अभी बात करनी है ना आपसे, तो आज 13 सितंबर है और आज है रविवार। तो उम्मीद करती हूँ कि आज रविवार के दिन आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। और अब हमारे आगे आने वाले समय में सारे त्योहारों का मौसम आ गया है। और मौसम की अगर हम बात करें तो भैया आज का मौसम, इस वक्त का अगर हम बात करें तो हवा की गति लगभग 8 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है या फिर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये एहसास किया और कि अचानक से हवा चलनी शुरू हो गई। हमारी स्टूडियोज़ की जो लाइट्स हैं वो झिलमिल झिलमिल कर रही थी और थोड़ी देर के लिए लाइट चली भी गई और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज हम कार्यक्रम कर पाएंगे या नहीं, हम आपसे रूबरू हो पाएंगे या नहीं। लेकिन देखिए ना, पल भर में ये मौसम कैसे बदल गया और एकदम से इसने अपना थोड़ा सा हमें रूप दिखाया। और फिर यूँ नहीं कहूँगी मैं कि बादल सारे चले गए हैं, बादल अभी भी बने हुए हैं और ये कब बरसेंगे इसका कुछ हमें अंदाज़ा नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये बरसेंगे तो ज़रूर। हवा थी, हवा कुछ बादलों को उड़ा करके ले गई है और हमें भी इसने पशुपेश में डाल दिया था कि भैया हम यहाँ रुकें

तो आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस तक गया होगा और न्यूनतम जो है उसके 18 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। अभी की बात करूं तो गूगल बाबा हमको दिखा रहे हैं 23 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मुझे बाहर देख करके कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा सा कम हो गया है तापमान। और हाँ, कल रात को कितनी ठंड थी, कुछ महसूस हुआ आप लोगों को? यानी कि अब सुबह और शाम की ठंड होना शुरू हो गई है, तो बस अब वो समय आ गया है जब धीरे धीरे आप लोग भी अपने बेड बॉक्सेस में पड़े हुए या जहाँ पर भी आपने उन्हें डंप करके रखा हुआ है, स्टोर, मतलब ये नहीं कहूँगी डंप करके, आपने संभाल के रखा हुआ है अपने ऊनी वस्त्रों को, गर्म वस्त्रों को, धीरे धीरे करके आप उन्हें अब निकालेंगे भी, क्योंकि धूपें लगने वाली हैं और श्राद्ध के समय पर ये ज़्यादा धूपें लगती हैं और उसी समय हम अपने ये सारे काम जो हैं वो करते हैं इतनी लंबी चौड़ी बरसात के बाद। तो हर साल ऐसा ही होता है कि हमारे साथ में त्यौहार चले होते हैं और साथ में हमारे घर के अन्य काम चले होते हैं, कहीं साफ़ सफाई का काम हो रहा होता है कहीं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसे घूम रही होती हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, तो ये दिन कुछ ज़्यादा भाग दौड़ वाले होते हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और अगर आज रात के मौसम के बारे में बात करूँ तो मौसम विभाग के अनुसार बारिश या फिर बारिश के साथ तेज़ बारिश की भी संभावना बनी हुई है, यानी गरज बरस के साथ भी वो हो सकती है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे स्टूडियो के बाहर इसने अपना रंग दिखाया था, और मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी देर से स्टूडियो में आज आई हुई हूँ, आज एक हमने पॉडकास्ट भी किया है, वो भी बहुत जल्दी ही आपके सामने आने वाला है, तो उसी के चलते मैं यहाँ पर काफ़ी देर से हूँ, मतलब 3 बजे के करीब से स्टूडियो में, और अचानक जब मौसम बदला ना तो हमें भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई ये क्या हो गया।

तो श्रोताओं, मैं सोच रही हूँ आपको कार्यक्रम का पहला गीत जो है ना वो गणेश चतुर्थी से संबंधित ही सुनवा दूँ। वैसे तो मुख्य गणेश चतुर्थी जो है वो 14 सितंबर को मनाई जाएगी, यानी कि कल से हमारे जो उत्सव हैं वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि की शुरुआत जो है वो 13 सितंबर यानी आज रात 8:36 से ही हो रही है।

जी दोस्तों, तो ये आपने अभी गणपति बप्पा का गीत सुना। नाइन्टी वन पॉइंट टू एफ एम रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और आज मैं आपको बता दूंगी, कार्यक्रम में मैं बात करने वाली हूँ हमारे बच्चों के बारे में, और ख़ास करके वो बच्चे भी नहीं, अगर आप सही अर्थों में समझें तो विद्यार्थियों के बारे में। विद्यार्थी जो कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, या फिर दोबारा हायर स्टडीज की तरफ। तो दोस्तों, अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपने पास या फिर अपनी स्टडी टेबल पर गणपति जी की एक छोटी सी मूर्ति या तस्वीर जरूर रखनी चाहिए। क्या कभी आपने भी सोचा है इसके पीछे की असली लॉजिक क्या है? और ये बिल्कुल सच है कि बच्चों से ऐसा कहा जाता है। वो दरअसल एक छात्र के लिए सफलता का सबसे बड़ा मैनेजमेंट लेसन है। अगर आप गणपति जी के स्वरूप को ध्यान से देखें तो उनका बड़ा सिर हमें सिखाता है कि हमेशा बड़ा सोचो और अपनी बुद्धि का विस्तार करो। उनके बड़े बड़े कान एक छात्र को याद दिलाते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो कि बोलता कम है और दूसरों को ध्यान से सुनता है, यानी कि गुड लिसनर बनता है। उनकी छोटी छोटी आंखें हमें सिखाती हैं कि तीक्ष्ण दृष्टि, यानी अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्य पर चील जैसी एकाग्रता से फोकस करना चाहिए। और उनकी लंबी सूंड हमें ये सिखाती है कि अपने आसपास के माहौल से हर अच्छी चीज़ को कैसे ग्रहण करना है।

छात्र जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होती है मन का भटकना और तनाव। जब भी कोई बच्चा पढ़ाई करते करते थक जाता है या फिर डीमोटिवेटेड महसूस करता है तो सामने बैठे विघ्नहर्ता बप्पा का वो मुस्कुराता हुआ शांत चेहरा उसे पॉजिटिव एनर्जी देता है। वो मूर्ति एक विजुअल एंकर का काम करती है जो कि बच्चे को याद दिलाती है कि शांत रहकर हर मुश्किल परीक्षा को पार किया जा सकता है। प्यारे स्टूडेंट्स, इस गणेश चतुर्थी पर बप्पा के स्वरूप से सिर्फ आशीर्वाद मत लीजिए बल्कि लाइफ के ये लेसन्स भी अपने साथ अपने घर ले जाइए।

दोस्तों, फिल्म आशीर्वाद का ये बहुत ही खूबसूरत और मासूम सा गाना है कि दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, बड़े ना होते, काश सारे ही बच्चे होते। तो ये तो संभव हो नहीं सकता है ना, क्योंकि जहाँ एक तरफ हम बच्चों की मासूमियत को बचाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी समझना होगा कि इस दुनिया को चलाने और इन बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए बड़ों का परिपक्व होना और उनकी ढाल बनना भी कितना ज़रूरी है।

काश ये दुनिया सिर्फ बच्चों की ही होती, जहाँ सिर्फ मासूमियत होती, खिलखिलाहट होती, कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन ज़रा ठहरिए और एक कड़वी हकीकत का सामना करते चलिए। अगर इस दुनिया में सिर्फ बच्चे ही होंगे तो फिर ये दुनिया चलेगी कैसे?

और अगर हम भी बच्चों की तरह ही नासमझ हो जाएंगे और हम बड़े ही समाज के इस दिखावे और रैंक की अंधी दौड़ में शामिल हो जाएंगे। अभी कौन सी दौड़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कार्यक्रम में धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर इन बच्चों को सही और गलत का अंतर कौन सिखाएगा? तो बड़ों का होना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो घर चलाएं या फीस भरें, बल्कि उनका होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो बच्चों के ऊपर आने वाले हर तूफान के आगे एक मजबूत ढाल बन करके खड़े हो जाएं। और माता पिता को आज वो बड़ा बनना होगा जो बच्चों के फेल होने पर भी उसे गले लगाएं और कहें कि बेटा, तुम्हारी जान इस परीक्षा से बड़ी है।

तो दोस्तों, हमने अभी ही दुनिया भर में शिक्षा से संबंधित कितने सारे जो दिवस हैं वो मनाए। याद है आपको कौन कौन से दिवस होकर के चले गए? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इनमें सबसे प्रमुख रहे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अभी आना है 11 नवंबर को। भारत में ये दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। और शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाने वाला जो दिवस था, शिक्षक दिवस, वो तो अभी हाल ही में हमने मनाया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर उनके सम्मान में। और विश्व शिक्षक दिवस वो भी आने वाला है 5 अक्टूबर को। पूरी दुनिया में शिक्षकों के योगदान को सराहने के लिए यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे, दुनिया भर में साक्षरता के महत्व को समझाने और अशिक्षा को खत्म करने के उद्देश्य से मनाया जाता है 8 सितंबर को। और एक शिक्षा विकास दिवस है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। तमिलनाडु में स्कूली शिक्षा के स्तर को सुधारने वाले महान नेता कामराज की याद में ये विशेष राज्य स्तरीय दिवस होता है। हमारे देश में इतने सारे दिवस मनाए जाते हैं जो कि केवल शिक्षा से ही संबंधित हैं। और इसके अलावा छात्रों से जुड़ा विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी हर साल 15 अक्टूबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। मैंने आपको ये बात पहले बता दी है।

आपको ये नहीं बताना था, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको ये सारे दिवस गिनाऊं। इसके पीछे की जो मेरी मंशा है वो आज कुछ और ही है। तो आप सुन रहे हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो दोस्तों, साल में कई दिन हम कैलेंडर्स पर लाल अक्षरों में निशान लगाते हैं। कभी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, कभी विश्व छात्र दिवस है, कभी शिक्षक दिवस है। इन तमाम दिनों के केंद्र में आखिरकार है कौन? एक छात्र जो अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर अपने छोटे से गांव या फिर शहर से बड़े महानगरों की तरफ रुख करता है।

तो फिर छोटे छोटे शहरों से झोला उठा करके जो चलते हैं महानगरों की तरफ, और वही महानगर उन मासूमों के लिए एक जानलेवा जाल बन जाएं, जैसा कि हमने हाल ही में देखा उस दर्दनाक हादसे में जहां एक पीजी या फिर कोचिंग इमारत उनके सपनों की कब्र बन गई। तो दिल रो उठता है ना, तब सवाल उठता है कि क्या इन कागजी दिवसों का कोई औचित्य, कोई महत्व रह जाता है।

आज के इस शो में हम इसी दर्द, इसी सच्चाई पर बात करेंगे। चलिए पहले सुन लेते हैं ये गीत, जो कि एक बच्चे के सपनों और उसकी मासूमियत को भी बयान करता है।

दोस्तों, आज हम एक छात्र की बात कर रहे हैं, पर जानते हैं एक छात्र रातों रात नहीं बनता। उसकी कहानी तब शुरू होती है जब वो इस दुनिया में कदम भी नहीं रखता है। जैसे कि एक माँ को पता चलता है उसके भीतर एक नन्ही सी जान धड़क रही है। उसी पल से घर की दीवारों पर सपने पेंट होने लगते हैं। पिता रातों को जाग करके सोचने लगता है कि मैं अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी दूंगा, उसे सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। माँ पेट पर हाथ फेरते हुए गुनगुनाती है और उसकी आंखों में बच्चे का एक कामयाब भविष्य तैरने लगता है। फिर वो दिन आता है जब घर की किलकारी गूंजती है, उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उसकी वो पहली मुस्कान, माता पिता का पूरा संसार बस उस नन्हे से वजूद के इर्द गिर्द सिमट जाता है। वो रात दिन भर जागते हैं, अपनी खुशियों की कुर्बानी देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा कल को एक बेहतरीन इंसान बनेगा। और देखते ही देखते वो 2.5-3 साल का हो जाता है। फिर वो दिन आता है जब उसके नन्हे से कंधों पर एक छोटा सा कार्टून वाला वाटर बॉटल और बैग टंगा होता है। जी हाँ, प्लेवे स्कूल में उसका पहला कदम। माँ उसकी नजर उतारती है, पिता गर्व से उसकी फोटो खींचता है जब वो पहली बार प्लेवे की दहलीज लांघता है। तब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं जा रहा होता, उस गेट के अंदर जा रहे होते हैं माता पिता के 3 सालों के संजोए हुए अरमान, उनका खून पसीना, उनकी पूरी दुनिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्लेवे तक पहुंचने से पहले उसे कुछ सिखाते नहीं है। घर में छोटे बच्चों को हमेशा सिखाया जाता है वेर इज़ योर हेड, वेर इज़ योर टंग, कि भाई आपकी टीथ कहाँ है, तो वो दिखाता है ऐसे उंगली से इशारा करके। तो उस प्लेवे के लिए भी उसे तैयार कर रहे होते हैं माता पिता। और ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में ये वाला जो पोयम है या गीत है वो नहीं गुनगुनाया जाता होगा या गाया नहीं जाता होगा। और इसी से बच्चा सीखता है कि जो ऊपर छत पे ये जो घूमती सी चीज़ है ये फैन होती है, तो उसे हम पंखा भी नहीं कहते हैं आजकल, तो हम फैन कहते हैं।

लेकिन सोचिए, जो माता पिता प्लेवे के पहले दिन बच्चे को छोड़ते वक्त ज़रा सरोनी पर तड़प उठते हैं, जब वही बच्चा बड़ा होकर के इस तरह की व्यवस्था की भेंट चढ़ जाता है, तो उनके सपनों का क्या होता है।

और तब हम बड़े मायूस हो जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि भाई हम तो रात दिन आराधना करते हैं, ईश्वर से

हमेशा सबके सुख की कामना करते हैं। कभी कभी मन में दुख बहुत बढ़ जाता है, तब हम हर जगह से हार जाते हैं और फिर ध्यान हमारा चला जाता है ईश्वर की ओर, और फिर शिकायत, शुभ शुभ शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है उस ईश्वर से भी कि भाई हमने आपकी इतनी आराधना की, हमने आपको इतना पूजा, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपने हमारे साथ ही ऐसा किया। क्योंकि हमारे मन में उस वक्त अंधकार होता है, कोई रास्ता नहीं सूझता। दर्द का रिश्ता फिल्म का ये गीत है हरिहरन की आवाज़ में, पर आप समझ गए होंगे कि इस गीत में उन्होंने गणपति बप्पा को हाथ में उठाया हुआ है, दोनों हाथों में उठा करके वो ये गीत गा रहे हैं, विसर्जन करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। और अगर आपको इस फिल्म की स्टोरी नहीं पता है तो जाकर के सर्च ज़रूर कीजिए।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला और इस वक्त हम अपने फेसबुक पेज से भी लाइव हैं आप सभी की सेवा में। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप फेसबुक पेज से भी। और हाँ, कुछ ही देर में अगर मैं आपसे कहूँगी कि आप भी इस विषय पर अपने विचार रख सकते हैं तो हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा। फोन नंबर तो आपको पता ही है 7018110091। तो दोस्तों, बात आज हो रही है एक छात्र के बारे में, एक बच्चे के बारे में, एक विद्यार्थी के बारे में। और जब एक बच्चा हायर एजुकेशन के लिए घर छोड़ता है ना, तो सिर्फ वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ जाती हैं माँ की वो सारी दुआएं भी, उसकी ममता। और माँ हर रोज़ फ़ोन पर पूछती है कि बेटा क्या खाना खाया तुमने। उसके साथ जाता है पिता का वो पसीना जो उसने दिन रात एक करके उस भारी भरकम फीस को देने के लिए बहाया होता है। तो सोचिए उस माँ पर क्या गुजरती होगी जब उसे पता चलता है कि जिस बच्चे को उन्होंने अफसर बनाने भेजा था वो व्यवस्था की लापरवाही और शिक्षा के व्यापारीकरण की भेंट चढ़ गया है। अब हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि केवल इसमें अब एजुकेशनल हब्स का ही काम है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि आपने देखा पीजी, किस तरह के पीजी इसमें जो हैं वो बच्चे रहते हैं, और बच्चे जो है ना वो अपने माता पिता के बारे में भी सोचते हैं, और तभी वो जो कम फीसेस वाले पीजीज हैं ना वो चुन भी लेते हैं कि कोई बात नहीं, माता पिता वहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ कर लेंगे, हम उन्हें कुछ बनकर दिखाएंगे, उन्होंने हमारे लिए न जाने कितने कितने त्याग किए हैं। और जो बच्चे इस बात को नहीं सोचते हैं और उन सारी चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं ना, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं हमारे समाज में, तो उनको भी ये सोचना चाहिए। ये कार्यक्रम आज बहुत ही खास विशेष हर बात हर टॉपिक पर है। तो जो बच्चे वाकई में समझते हैं वो अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारे जो कुछ हम खा रहे हैं क्या वो हेल्दी है, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं होगी तो फिर पढ़ाई भी कैसे करेंगे। कई बच्चे फूड पॉइजनिंग का भी शिकार होते हैं, कई बच्चे जो होते हैं वो मेंटल स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर बहुत खर्चा कर दिया, लेकिन हमसे तो जहाँ पर हमें भेजा गया है वो पढ़ाई हमसे नहीं हो पा रही है। तो आपने देखा ना वो कोटा वाला इंसिडेंट, कितने बच्चों ने वहाँ पर अपनी जान गंवाई है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी भी कॉस्ट पर हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे दूर चले जाएं। हम हमेशा यही चाहेंगे बेशक वो पढ़ें ना, कुछ भी ना करें, लेकिन ना तो वो नशे पत्ते में जाएं और ना ही इस तरह से किसी व्यवस्था की भेंट चढ़ जाएं। हम चाहेंगे कि वो कम से कम जीवित तो रहें, फिर चाहे वो अपने सपने किसी भी तरह से पूरे करते रहें। बच्चे इस वक्त नहीं हैं उनके माता पिता तो कम से कम ऐसा ही सोच रहे होंगे, है ना। चलिए एक गीत सुन लेते हैं, फिर आऊंगी मैं इसी विषय पर वापस।

दोस्तों, तो कार्यक्रम को बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील न बनाते हुए धीरे धीरे हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आपके लिए लाइट म्यूजिक के कुछ गीत भी हैं कार्यक्रम में। तो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

दोस्तों, क्या उन बच्चों को तब ये कहा गया था कि अगर आप इंसाफ की डगर पर चलेंगे तो आप किस तरह के नेता बनेंगे? मतलब आपको ही कल का नेता बनना है, तो इसलिए आप सबको इंसाफ की डगर पर चलना होगा। लेकिन क्या आज उन बच्चों को दिखाई दे रही है वो इंसाफ की डगर? आखिरकार है कहाँ? खो गई है ना वो डगर।

करोगे अब, क्योंकि हर जगह ही कुछ ना कुछ अंधेर गर्दी मची ही हुई है। जिस दौर में ये गीत लिखा गया था, हाँ वो दौर कुछ वैसा था कि जब इस तरह के गीतों की जरूरत भी थी।

मतलब इंसानियत वाकई में लोगों की में के मन में थी भी, और तन मन की भेंट दे करके भारत की लाज रखने का जज्बा भी हम सब में उस वक्त था।

0: लेकिन क्या आज के सिनेरियो में भी ये सब कुछ जो भी इस गीत में कहा गया वो सच है? क्या बच्चे वाकई में ऐसी इंसाफ की डगर पर चलना चाहेंगे? कार्यक्रम में आगे हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया है हिंदी समाचारों का।
1: नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की जो विविधता है इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो, मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह में मजबूती और लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटों ने ये दिखा दिया है कि आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए।
2: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटी बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और बरुंडे के राष्ट्रपतियों और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इधर प्रधानमंत्री ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। कृषि और करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। दुबई में महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला आज रात 8 बजे मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला और समाचारों, और इस ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हो गए हैं करने आप सभी से बातचीत। पहले इस गीत की कुछ पंक्तियां सुनिए।

0: तो दोस्तों, आज से दशकों पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब ये गीत गूंजा था। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, उस दौर के महान पुरोधाओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने गुलामी और अशिक्षा के एक बहुत बड़े तूफान से इस देश की कश्ती को बाहर निकाला था। उन्होंने ये कश्ती आने वाली पीढ़ी यानी हमारे बच्चों के हाथों में सौंपी थी, ये सोच करके कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ लिख कर इस कश्ती को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएंगी।
1: देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा।
0: और आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो दिल बैठ जाता है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस कश्ती को इतने जतन से तूफानों से निकाला गया था, उसका ऐसा हश्र होगा। आज शिक्षा का जो बाजारीकरण हो चुका है ना, ये जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया और सुरक्षित पीजी के हब बन गए हैं, इन्होंने हमारी कश्ती को एक दूसरे और पहले से भी ज़्यादा खतरनाक तूफान में ला कर के फंसा दिया है।
1: देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
0: और दोस्तों, हम अब आपके फोन कॉल्स का इंतजार भी कर रहे हैं कि अगर इस विषय पर आप कुछ कहना चाहते हैं, या आप लोगों के साथ भी कोई एक्सपीरियंस घटा है, या आप समाज हित में इस विषय पर कोई बात कहना चाहते हैं, तो हमारी फोन लाइन्स खुले हुए हैं।
1: मंदिर तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता।
0: तो ये नया तूफान है लालच का, मुनाफे का और मासूम बच्चों के सपनों के सौदे का। पहले बच्चे देश को संभालने के लिए पढ़ते थे, आज बच्चे इन चमचमाते कोचिंग सेंटर्स की तिजोरियां भरने के लिए पढ़ रहे हैं। जो कश्ती समंदर पार करने चली थी, वो आज दिल्ली के किसी बेसमेंट के पानी में या कोटा के किसी तंग कमरे के डिप्रेशन में डूब रही है। जिन बच्चों के भरोसे देश छोड़ना था, उन बच्चों को आज हम सुरक्षित छत और दो वक्त का साफ खाना भी नहीं दे पा रहे हैं।

0: को रखना मेरे पास।
1: तो आज ये समय आ गया है कि हम इस कश्ती को इस बाजारीकरण के भंवर से दोबारा बाहर निकालें, वरना हमारे पास संभालने के लिए न तो ये देश बचेगा और न ही हमारे बच्चे।

बहुत मोटिवेटेड सा गाना है ये, और इस गाने को सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सच में क्या आज की हमारी व्यवस्था ऐसी है कि ये गीत भी प्रासंगिक हो सके? चलिए अगले गीत की ओर चलते हैं हम, और फिर बात भी करेंगे साथ साथ में।

तो आज के इस कोचिंग और डमी स्कूल के दौर पर सबसे करारा और तीखा व्यंग्य है, जहां कभी बच्चों की मुट्ठी में देश का सुनहरा भविष्य और उनकी खुद की आज़ाद तकदीर हुआ करती थी, आज उनकी मुट्ठी में सिर्फ कोचिंग के पर्चे, भारी भरकम फीस की रसीदें और डिप्रेशन की दवाइयां ही बची हैं।

जरा जाकर के खोलिए तो आज के 14-15 साल के बच्चों की मुट्ठी। आपको वहां पर कोई सुनहरी तकदीर या देश का भविष्य नहीं मिलेगा। उस बेचारी मासूम मुट्ठी को खोलेंगे तो वहां से निकलेगी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाखों रुपए की फीस, जैसा मैंने पहले कहा, उसकी रसीद, डमी स्कूल का फर्जी अटेंडेंट कार्ड। अब ये डमी स्कूल क्या है इस पर भी मैं आऊंगी अभी बस थोड़ी देर में। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का एक ऐसा टाइम टेबल जो नासा

0: हाँ बिल्कुल, उस वक्त ये सिखाया जाता था कि मुश्किलों से कैसे लड़ना भिड़ना है, लेकिन अब जब मुश्किलें ही अलग तरह की हो जाती हैं, उसका रूप रंग ही चेंज हो जाता है, तो कितनी मुश्किलों से आप लड़ेंगे भिड़ेंगे। ये गीत ये भी कहता है कि दिल पे किसी का खौफ नहीं है, आज हमारे पीछे कोई जालिम फौज नहीं है। अरे भाई, जालिम फौज तो छोड़िए, आज इन बच्चों के पीछे सीधे कोचिंग माफियाओं और बिल्डिंग के मालिकों की पूरी सल्तनत खड़ी है, जो इनके पैदा होने से पहले ही इनके माता पिता के डर को भांप लेती है और 10वीं पास करते ही बच्चे को एक रेस का घोड़ा बना देती है।
1: नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है।
0: क्या आप सबको वाकई में लगता है कि 10वीं पास करते ही जो बच्चा है वो उसका दिमाग इतना परिपक्व होता है कि वो इस तरह की चीज़ें झेल सके? 15 साल की उम्र में जहाँ बच्चे की मुट्ठी में क्रिकेट का बल्ला, गिटार की स्ट्रिंग्स या फिर दोस्तों का हाथ होना चाहिए था, वहाँ हमने ज़बरदस्ती थमा दी है IIT और नीट के भारी भरकम मॉड्यूल्स। अब ये बच्चे अपनी तकदीर क्या लिखेंगे? इनकी तकदीर तो वो बड़े बड़े होर्डिंग्स वाले कोचिंग सेंटर्स पहले ही तय कर चुके हैं कि भाई बेटा, तुम इस साल के हमारे प्रोडक्ट हो। तो चलिए, इसी बेहतरीन कड़वे सच और व्यंग्य के साथ हम सुन तो रहे हैं, ये गीत पूरा कर लेते हैं।
1: कैसे होती समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों, हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसे होगी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और अब जानते हैं कि छोटे से दिल की छोटी छोटी आशाएं भी होती हैं। तो अभी हमने बात की थी डमी स्कूल्स की, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, इस पूरे चक्रव्यूह में क्या सिर्फ कोचिंग वाले जिम्मेदार हैं?

जी नहीं, इसके बराबर के भागीदार हम माता पिता भी हैं। आज पेरेंट्स पर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है ना, वो दोहरी मार है। और एक तरफ वो स्कूल की लाखों रुपए की फीस सिर्फ कागजों पर नाम बनाए रखने के लिए दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कोचिंग सेंटर्स के काउंटर पर अपनी जिंदगी भर की कमाई एडवांस में जमा करवा रहे हैं। आपको पता है ये पैसे का नुकसान तो है ही, और ये फिर भी झेला जा सकता है, लेकिन जो नुकसान बच्चों की भावनाओं और उनकी मासूमियत का हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? दसवीं कक्षा पास करते वक्त एक बच्चे की उम्र क्या होती है, महज 14 या 15 साल? क्या 15 साल का एक बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने उन दोस्तों को छोड़ दे जिनके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया, और 10वीं के बाद अचानक उसके सारे दोस्त छूट जाते हैं, खेल का मैदान छूट जाता है, और उसे सीधे धकेल दिया जाता है एक ऐसे हब में जहां उसका कोई भी दोस्त नहीं बल्कि उसके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं।

उम्र में बच्चे का दिमाग इतना परिपक्व बिल्कुल नहीं होता कि वो अकेलेपन और 14-14 घंटे की पढ़ाई के इस भयानक प्रेशर को झेल सके। तो हम अनजाने में ही अपने बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी मानसिक सेहत की बलि चढ़ा रहे हैं सिर्फ इस रेस में आगे निकलने के लिए।

लीजिए, छोटी में दुनिया बांधने की बात हो रही है, और अब तो जो लड़कियां हैं उन्होंने चोटियां करनी भी छोड़ दी हैं, क्योंकि उन्हें एक अलग सा लगता है। माता पिता को आज ये समझना होगा कि 15 साल की उस नाजुक पौधे को अगर आप ज़बरदस्ती खींच करके बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो फल नहीं देगा, बल्कि जड़ से टूट जाएगा।

तो सो आज हम शिक्षा की जिस बाजारीकरण की बात कर रहे हैं ना, उसका एक और हैरान कर देने वाला चेहरा है ये, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, डमी एडमिशन। और आपको पता है ये इलीगल भी है और बड़ा ही खतरनाक दौर है। होता क्या है ना कि 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं क्लास में आज कल ये डमी स्कूल्स धड़ल्ले से चल रहे हैं। कहने को बच्चा स्कूल में एनरोल होता है, भारी भरकम फीस दी जाती है, कागज़ों पर उसकी रोज़ की अटेंडेंस भी लगती है, लेकिन हकीकत में वो कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखता। पूरा दिन पूरी रात गुजार देता है कोचिंग सेंटर्स की उन बंद दीवारों और रट्टामार फैक्ट्रियों के अंदर। तो कभी सोचा है आपने कि ये डमी स्कूल्स और कोचिंग का गठजोड़ जो है हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहा है? CBSE और लगातार सरकारें जो हैं इस पर सख्त रुख अपना रही हैं। सरप्राइज इंस्पेक्शंस भी हो रहे हैं, कई स्कूलों की मान्यता रद्द भी की जा चुकी है और यहाँ तक कि डमी छात्रों को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर करने तक की चेतावनी भी दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये माफियाज जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एडमिशन्स के वक्त कोचिंग वाले माता पिता को बहला लेते हैं कि स्कूल जाने में टाइम वेस्ट क्यों करवाना है अपने बच्चे का, सीधे कोचिंग ही चले आओ। पर ये डमी कल्चर के चक्कर में हम अपने बच्चों से उनका सबसे कीमती दौर छीन रहे हैं। स्कूल सिर्फ डिग्रियां नहीं देता, वो बच्चों को समाज में जीना भी सिखाता है। उन्हें दोस्त भी देता है, खेल का मैदान भी देता है और उनका मानसिक विकास भी करता है। तो जब बच्चा स्कूल छोड़ करके इन बंद कमरों में कई कई घंटे बंद रहता है तो फिर उसका सामाजिक रूप से बिल्कुल ही नाता टूट जाता है, वो अकेला पड़ जाता है और उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं आते, तो वो ही अकेलापन, अवसाद और सुसाइड जैसे भयानक रास्तों की तरफ हो लेता है। और कई कई बार तो जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ भी बढ़ जाते हैं।

तो फिर जब इस गीत को सुनते हैं तो आंखों के सामने क्या आता है? लंच बॉक्स शेयर करना, बारिश के पानी में कागज़ की कश्ती चलाना, पीटी पीरियड्स में बिना बात के हंसना, दोस्तों के साथ साइकिल पर घर लौटना। स्कूल के दिनों का मतलब ही यही था, बेफिक्री, आज़ादी, खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीते थे वो बच्चे। लेकिन आज जरा रुक कर के सोचिए, क्या आज के बच्चों के पास वो स्कूल के दिन बचे भी हैं? कल तक जो स्कूल के दिन बेफिक्री में बीत जाते थे, आज वही दिन कोचिंग सेंटर्स की बंद दीवारों में, मनमर्जी फीस के दबाव में और डिप्रेशन के भंवर में खो गए हैं। आज का बच्चा स्कूल के दिनों को याद करके मुस्कुराता नहीं है, बल्कि वो सुबह से रात तक सिर्फ नंबरों की रेस में भागते भागते थक जाता है। शिक्षा का ये बाजारीकरण हमारे बच्चों से उनके जीवन के सबसे खूबसूरत, उनके स्कूल के दिन छीन रहा है।

ये दिन भी तो ज़रूरी होते हैं। और हम बच्चों को डांटते हैं कि भैया आप ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो, अपने दिन भी तो याद कीजिए ना। पेरेंट्स को कह रही हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी उन दिनों में जब आप प्यूबर्टी की स्टेज पर थे तो इस तरह की फीलिंग्स को कभी भी आपने अपने मन में जगह नहीं दी? क्या कभी आप किसी की तरफ आकर्षित नहीं हुए? आज ऐसा क्या हो गया है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वो वाली जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल भी उनके मन में नहीं आनी चाहिए, वो तो बिल्कुल भी इन फीलिंग्स को महसूस ना करें? क्यों? मानती हूँ ज़माना थोड़ा सा बदल गया है, जैसा ज़माना तब था अब नहीं रहा, लेकिन फीलिंग्स तो वही है ना, फीलिंग्स तो वैसी ही रहती हैं। हमारी जो जीवन की स्टेजेस हैं वो भी बदलती रहती हैं और वैसी ही बदलती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है।

चलिए हम सब मिलकर के कोशिश करें कि हमारे बच्चों का बचपन और उनके स्कूल के जो दिन है इस व्यवस्था की भेंट ना चढ़ जाए। और जैसे कि गणपति बप्पा का आगमन हो ही रहा है, तो उनसे भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे बच्चों को सुख शांति प्रदान कीजिएगा। और श्रोताओं, बातें करते करते अब हम पहुंच गए हैं 7:30 पर। जी हाँ, स्टूडियो की घड़ी में हो चुका है ये समय। साथ साथ में अपनी घड़ियों को भी मिलाते चलिए।

आपको भी याद अपने वो दिन, गिटार के दिन, अरिजीत सिंह, तुषार जोशी की आवाजों में सुन रहे हैं आप छिछोरे फिल्म का ये गीत। जीने दीजिए अपने बच्चों को भी वो दिन, क्योंकि देखिए हमारे जो बच्चे हैं ना वो बड़े समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं वो अपने भविष्य को लेकर के सजग नहीं हैं, बल्कि हमसे कहीं चार गुना ज़्यादा आगे हैं। हमें तो बिल्कुल पता नहीं होता था कि हमने आगे अपनी लाइफ में करना क्या है, और हम लोगों ने अपने वो वाले जो दिन है ना वो बहुत अच्छे से इन्जॉय किए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उन्हें इन्जॉय करें। जीवन की हर स्टेज को एक बच्चे को इन्जॉय करना चाहिए। जैसे कि बच्चा बचपन में होता है तो उसे बचपन के वो दिन उनका आनंद उठाने देना चाहिए। हम बड़ी रोक टोक लगाते हैं, अब कहीं केक खा रहा है बच्चा तो उसके मुंह पर लग गया तो हम कहेंगे जल्दी से इसको क्लीन कर लो, वॉश योर हैंड्स, वाइप योर माउथ, है ना। इस तरह से करते हैं ना हम, बड़ा बनावटी सा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कुछ लोगों के सामने, और बच्चा भी पशुपेश में पड़ जाता है कि अरे ये क्या हुआ। मैं जैसे घर में रहता हूँ, अगर मैं कहीं बाहर आया हूँ तो बाहर और घर में इतना फर्क क्यों है। तब बच्चा उस वक्त तो बिल्कुल समझ नहीं पाता है ये सब चीज़ें। और अगर मैं ये कहूँ कि हम अपने बच्चों के दुश्मन खुद ही बनते चले जा रहे हैं, और तब से लेकर जबकि वो समझने वाली स्टेज में भी नहीं होते, वो तो सिर्फ अपने खेल खिलौनों में खोए रहना चाहते हैं, और हम कभी से उन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने की रेस में, बनाने की रेस में लग जाते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होकर के ये बनेगा, वो बनेगा। हाँ, हो सकता है कि आपके बोलने से वो उस तरफ डाइवर्ट हो भी जाए और वो भी बोलना शुरू कर दे कि हाँ मुझे बड़ा होकर के ये बनना है, वो बनना है। लेकिन धीरे धीरे जब ज़िंदगी की समझ उसे भी आती चली जाती है और उसे पता लगने लग जाता है कि मेरे अंदर आखिरकार किस चीज़ की काबिलियत है, आखिरकार मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ, तो फिर उसके मन में भी बहुत सारी कुलबुलाहट होती है। तो उस कुलबुलाहट को आप भी तो थोड़ा सा महसूस कीजिए, आखिरकार आप ही तो उनके पेरेंट्स हैं। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब जो बच्चे चले गए वो तो वापस नहीं आने वाले ना। हो सकता है उनमें से कुछ बच्चों ने ये ऑप्शन खुद ही ऑप्ट किया हो, और हो ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें ज़बरदस्ती धकेला हो।

0: श्रोताओं, हमारी अभी अभी नज़र गई है और कोई फ़ोन कॉल पर है, आइए बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, मान्यवर प्रणाम।
0: हाँ जी प्रणाम जी, कैसे हैं आप?
1: संध्या काल कालीन प्रणाम आपको।
0: आपको भी जी।
1: संध्या जी।
0: हाँ जी, आप श्रोताओं के लिए बता सकते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं अनिल बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी अनिल जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी जी जी
0: जी, बताएं, आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे।
1: पहले तो आप आज शिक्षा के बारे में बता रहे, बोले थे विषय,
0: एक्चुअली विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है।
1: हाँ,
0: बच्चों
1: हाँ,
0: के बारे में जी।
1: तो एक्चुअली मतलब बात यह है कि आजकल का जो विद्यार्थी है ना
0: जी,
1: वो भले ही मैट्रिक के बाद या जो मर्जी कुछ भी कर ले, पर जब तक उसका भविष्य ओरिएंटेड नहीं होगा, भविष्य मतलब पक्का नहीं होगा, श्योर नहीं होगा, तो उसके दिमाग में एक ही चीज लगी थी, प्रश्न क्वेश्चन मार्क। तो सबसे बड़ी बात मैंने इसी चीज में निष्कर्ष एक कंक्लूजन निकाला है, जो बातें आपने करी है
0: जी।
1: कि वो कभी जब उसके दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना शुरू से ही कि मैं क्या करूंगा, तो भले ही वो जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर ले, जो मर्जी कुछ भी कर ले, पर उसके आगे उसका कुछ नहीं चलता, बस बस नहीं होता, कोई बस नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखो ये मोरोबर जो स्टूडेंट है ना, इस चक्कर में या तो नशे के चक्कर में जा रहे हैं, जब तक जबकि हमारा देश बोलते हैं कि युवा देश है, तो हम युवा कई एनर्जी का यूज करें देश के लिए, उसके मतलब उसके जो एनर्जी है उसका यूज सही कार्य में, सही दिशा में मार्ग पर लगाया जाए ना, सही ट्रैक पर लिया जाए, तो देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज तो देश तो भड़क रहा है, एजुकेशन सेक्टर को कबाड़ा निकल चुका है, बहुत बुरा हाल है।
0: तो मेरे आप क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं?
1: देखो मैं नहीं नहीं नहीं

0: युवाओं को क्या सही से ना, मैं जो शिक्षा प्रणाली है ना ये सही नहीं है एक्चुअली। सही मैं
1: एक मिनट अनिल जी,
0: मैं
1: कुछ कुछ आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है।
0: जी मैं आपको एक ही बताऊं कि हमारे पहले गुरुकुल से मतलब जो विद्यार्थी निकलते थे तो वो विद्यार्थी परिपक्व होते थे, पूरी
1: जी
0: तरह मैच्योर होकर निकलते थे।
1: जी
0: आजकल का विद्यार्थी किसी मामले में भले उसको शिक्षा दे दो, देखो शिक्षा आपको एक हुनर सिखा सकती है ना, पर वो चीज नहीं सीखे मतलब परिपक्व नहीं कर सकती।
1: मतलब जीवन जीना नहीं सिखा सकते, आपका कहना कहने का मतलब ये है।
0: जी
1: हाँ
0: कि शिक्षा से आदमी परिपक्व होना चाहिए पर होता नहीं है, वो परिपक्व नहीं हो रहा आजकल।
1: हाँ,
0: पर
1: क्योंकि जीवन में
0: वो
1: बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं
0: मतलब
1: और उन
0: पूर्णतया वो
1: समस्याओं से
0: मतलब
1: कैसे
0: मैच्योर नहीं
1: जूझना
0: होता है।
1: है उसे ये भी पता होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल अभी हम सार्थक हो सकते हैं, अगर शिक्षा को मायने नहीं रह गया अब तो।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया बात आपने रेडियो गुंजन धर्मशाला से की है। अब हमारे पास 5 मिनट हैं और उसके बाद समाचार आ
0: जी,
1: जाएंगे,
0: धन्यवाद
1: प्रादेशिक समाचार भी
0: भैया।
1: सुनिएगा आप,
0: बिल्कुल
1: उसमें भी
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: जरूर
1: सारी जो जानकारियां हैं वो दी जाती हैं।
0: जी,
1: अनिल जी,
0: धन्य
1: फ़ोन करने के लिए बहुत
0: जी
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थे अनिल बलोरिया जी, बात ये हमेशा ही बहुत अच्छी करते हैं और इन्होंने जो बात कही वो मैं कार्यक्रम में अभी कहने ही वाली थी कि बच्चों को आप शिक्षा तो दीजिए ही, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को ये भी बताइए कि विपरीत परिस्थितियां हो जाएं तो कैसे आपको उस जीवन को जीना है जो आपके सामने पहाड़ की तरह लगता है उस वक्त जब आपके सामने कोई भी चारा नहीं होता। चलिए अब ये गीत सुन लेते हैं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

हमें अपने इस नादान दिल यानी कि परिंदे को उड़ाना ऐसे ही नहीं उड़ा देना है, बल्कि कहीं किसी जगह पर फोकस करना है।

0: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में। और अब हम चलते हैं कार्यक्रम में आगे, आपको सुनवाते हैं प्रादेशिक समाचार, चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो।
1: आने वाले कई बेहतर वीडियो का आधार है

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप सुनिए प्रादेशिक समाचार। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा ने प्रदेश में लॉटरी करने के फैसले को तुरंत वापस लेने का किया आग्रह। राज्य में खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो हिमाचल इवेंट बड़े स्तर पर आयोजित करेगी सरकार। और प्रदेश में सीजन के दौरान सामान्य से 11% कम वर्षा दर्ज। करीब 1,600 करोड़ रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की है। भारत मंडपम में आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे व अंतिम दिन उन्होंने कहा कि नेताओं के महत्वपूर्ण विचारों और सुझावों ने सहयोग को व्यापक व प्रगाढ़ बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों का समूह समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है।
1: सबकी मौजूदगी, ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: चलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद के विरुद्ध कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार से आवाजाही, आतंकवाद को आर्थिक मदद और आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने के विरुद्ध कार्रवाई का आह्वान किया गया है। इस बीच सांसद अनुराग ठाकुर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने विविध हितों और विचारधाराओं वाले देशों को वैश्विक प्रगति के साझे एजेंडे पर एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की धार्मिक परंपराओं, प्राचीन विरासत और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण पर बल दिया है। उन्होंने आज कांगड़ा जिला के प्रसिद्ध मां ज्वालामुखी मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश के लोगों की समृद्धि व कल्याण की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के पवित्र मंदिर और तीर्थ स्थल केवल आस्था व श्रद्धा के केंद्र ही नहीं है, बल्कि हिमाचल की समृद्ध आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत का। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया है। कांगड़ा में आज भाजपा मंडल पूरा करने में भी विफल रही है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं बंद होने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
2: सरकार ने पिछली सरकार द्वारा चलने वाली योजनाओं को बंद किया है। जिम केयर को पूर्ण रूप से बंद करने से आम जनमानस दुखी है। सहारा योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से आम व्यक्ति को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि ये योजनाएं गरीब व्यक्ति के लिए चलाई गई थी, ये योजनाएं उन लोगों के लिए चलाई गई थी जो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा इस सरकार की झूठी गारंटियों के बारे में भी चर्चा हुई है।
0: बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से शुरू होने वाले विशेष कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। विधायक पवन काजल भी इस दौरान मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल पर।
3: डॉक्टर साहब,

0: कि प्रदेश की विशिष्ट संस्कृति पूरे विश्व में अनूठी है और आम जनमानस इससे गहराई तक जुड़ा हुआ है। रोहित ठाकुर ने देवगढ़ में निर्माणाधीन विद्यालय के भवन के कार्य का निरीक्षण भी किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार से प्रदेश में लॉटरी शुरू करने के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि लॉटरी को केवल आय के साधन के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द पैसा कमाने की उम्मीद व्यक्ति को बार बार टिकट खरीदने के लिए प्रेरित कर सकती है और इसका आर्थिक बोझ विशेष रूप से सीमित आय वाले परिवारों पर पड़ सकता है। जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार को अपनी ऊर्जा प्रदेश में रोजगार सृजन और निवेश बढ़ाने पर लगानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि सरकार नशे की रोकथाम के लिए पूरी तरह सजग है और सभी स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। सोलन में आज 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में नशा समाज के समक्ष एक चुनौती बनकर उभरा है। शांडिल ने कहा कि खेल गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें शारीरिक विकास की ओर आकर्षित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में हमीरपुर ने सोलन को पराजित किया। युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा है कि प्रदेश में आने वाले समय में खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो हिमाचल इवेंट बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। पांवटा साहिब में आज राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि इन खेलों के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 15 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में खेल संरचना के विकास के साथ साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। प्रदेश में मॉनसून के दौरान इस बार सामान्य से 11% कम वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि पिछले वर्ष मॉनसून सीजन में सामान्य से 39% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग ने 19 सितंबर तक भारी वर्षा की संभावना से इनकार किया है। इस मॉनसून सीजन में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 300 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 1683 करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुँचा है। लोक निर्माण विभाग को से अधिक 1231 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी वर्षा का दौर जारी रहा। भूस्खलन के चलते राज्य के विभिन्न स्थानों पर करीब 70 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। प्रदेश के मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने आज सिक्किम के महत्वपूर्ण संस्थानों व स्थलों का दौरा किया। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित इस भ्रमण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कृषि अनुसंधान, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और पर्यटन से जुड़ी पहलों की जानकारी हासिल की। प्रतिनिधिमंडल ने सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से भी भेंट की और विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए ब्रिक्स देशों की सराहना की। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा ने प्रदेश में लॉटरी शुरू करने के फैसले को तुरंत वापस लेने का किया आग्रह। राज्य में खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो हिमाचल इवेंट बड़े स्तर पर आयोजित करेगी सरकार। और प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 11% कम वर्षा दर्ज, करीब 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:30 पर। नमस्कार।
1: 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो दोस्तों, आज हमने इस 2 घंटे के शो में शिक्षा के इस पूरे सफ़र, इसके व्यापारीकरण और इसके बीच पिसते हमारे बच्चों की बात की। 14 तारीख से शुरू हो रहे इस गणेश उत्सव के पावन मौके पर आइए अब हम विघ्नकर्ता बप्पा से सिर्फ बच्चों की कामयाबी नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा।
2: प्रादेशिक समाचार।
1: तो उनकी सुरक्षा, उनके बचपन और उनकी मानसिक शांति की प्रार्थना करें। अपने बच्चों को एक सुरक्षित छत दीजिए, उन्हें वो अनकंडीशनल लव दीजिए जिसकी कि उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि कोई भी बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए या फिर नशे के दलदल में ना फंस जाए। क्योंकि आखिरकार हमें ज़रूरी तो हमारे बच्चे हैं ना। ठीक है, ज़िंदगी में कहीं पहुँचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहुँचते हैं तो क्या आप उन्हें नहीं अपनाएंगे? तो क्या फिर वो आपके बच्चे नहीं रहेंगे? तो यही होता है अनकंडीशनल लव। जब हम एक बार कह देते हैं ना कि हम अपने बच्चों से बिना शर्त प्यार करते हैं, और फिर हम उनको भला बुरा बोलते हैं कभी भी किसी भी वजह से, हाँ समझाने के लिए डांटना ज़रूरी है, पर अगर वो कहीं कामयाबी नहीं छूते हैं तो हमारा उनसे मुंह मोड़ने लेना वो गलत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के शो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, और अब इन सभी बातों को लेकर के आप आगे को बढ़ेंगे। ये 10 दिनों का उत्सव अब जो हमारा शुरू हो गया है, गणपति उत्सव, इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के जाते हैं, ताकि गणपति जी का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा बने रहे। तो ज्योति बढ़ाने को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। जल्द ही मिलूंगी आपसे किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आज इस कार्यक्रम में मुझे तकनीकी सहयोग दिया शशि ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे संदीप परमार।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज
1: दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन,
2: उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
3: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरप्राइज समझ नहीं पा रहा था।

0: जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
1: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
2: जा रही हो बेटा?
3: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कर जा रही हूँ।
2: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
3: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
4: और डॉक्टर को भी?
3: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
2: और ब्लड डोनर को?
3: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
4: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
3: वो कैसे?
5: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
4: बस हो गया।
5: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
6: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
7: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
6: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। फिर भी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
7: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
6: हाँ देखो क्या हो गया।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आ रही है हमारे दुखों को हरने वाले, सुख समृद्धि देने वाले विघ्नहर्ता गणेश। जी हाँ, श्रद्धा और आस्था का पावन पर्व गणेश चतुर्थी आ रही है, खुशियों का मौसम आ रहा है और हमारे लाडले बप्पा हमारे घरों को महकाने आ रहे हैं। बुद्धि के दाता मंगल मूर्ति के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। आइए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मिलकर भक्ति के इस पावन उत्सव को मनाएं, अपने घरों को सजाएं, मोदक बनाएं और पूरे दिल से कहिए गणपति बप्पा मोरिया।

0: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
1: जा रही हो बेटा?
2: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
1: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
2: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
3: और डॉक्टर को भी?
2: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
1: और ब्लड डोनर को?
2: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
3: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
2: वो कैसे?
4: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
3: बस हो गया।
4: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
5: वैसे ना आजकल हड्डी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
6: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
5: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
6: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
5: हाँ देखो क्या हो गया।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: प्रेम प्रेम करके मुझको कर देगी अब तू पागल। मेरा धीरज डोल रहा है लाज रखे गंगा जल।
1: बोल सियावर

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल?
4: बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
5: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आ रहे हैं हमारे दुखों को हरने वाले, सुख समृद्धि देने वाले विघ्नहर्ता गणेश। जी हाँ, श्रद्धा और आस्था का पावन पर्व गणेश चतुर्थी आ रही है, खुशियों का मौसम आ रहा है और हमारे लाडले बप्पा हमारे घरों को महकाने आ रहे हैं। बुद्धि के दाता मंगल मूर्ति के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। आइए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मिलकर भक्ति के इस पावन उत्सव को मनाएं, अपने घरों को सजाएं, मोदक बनाएं और पूरे दिल से कहिए गणपति बप्पा मोरिया।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन,
2: उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
3: अर्जुन
2: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
6: जा रही हो बेटा?
7: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
6: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
7: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
8: और डॉक्टर को भी?
7: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
6: और ब्लड डोनर को?
7: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
8: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
7: वो कैसे?
9: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
8: बस हो गया।
9: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
10: वैसे ना आजकल हड्डी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
11: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
10: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
11: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
10: हाँ देख लो क्या हो गया।

समझाओ दिल इसको दूं या उसको दूं। इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।